होटल फिल्म का गीत आपने सुना, आशा भोसले और मनहर उधास की आवाज़ें थीं। गीतकार थे इंदिवर, संगीतकार उषा खन्ना। ये था आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का आखिरी गीत। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इसके बाद 2:15 पर हिंदी में समाचार आप सुनेंगे। समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 सफलतापूर्वक आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ये प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इसे हैदराबाद की एक निजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस उपलब्धि के लिए स्काईरूट एरोस्पेस को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
2: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 की टीम को उनसे मिलने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये ऐतिहासिक उपलब्धि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ती है। उन्होंने कहा कि निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि यह अभियान भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में

0: देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उपलब्धि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।
1: Congratulations in space for facilitating
2: इन स्पेस और इसरो को इस शानदार सार्वजनिक निजी भागीदारी और सफल प्रक्षेपण के लिए बहुत बहुत बधाई। इस सहयोग को अनुकूलित करने के लिए इसरो को बधाई। आज के सफल प्रक्षेपण ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।
1: इन द हाईली कॉम्पिटिटिव एरिना ऑफ स्पेस इकोनॉमी
0: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में हुए सुधारों, स्वदेशी नवाचार और उद्यमशीलता की भावना की मजबूती को दर्शाती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वर्चुअल माध्यम से नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस नई रेल सेवा के शुरू होने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच रेल संपर्क को और मजबूती मिलेगी। ये रेलगाड़ी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आने वाले पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के साथ साथ रामनगर के निकट स्थित मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी लाभदायक होगी। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में दो दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी।
3: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में, और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है। और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में दो दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
0: ये समाचार हमारे newsonair ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत के नीति केवल एक बयान मात्र नहीं है, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। नई दिल्ली में आज फोर्सेस फर्स्ट कॉन्क्लेव में श्री सिंह ने कहा कि भारत न केवल अपनी सीमाओं पर ही आतंकवादियों पर हमला करेगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनके ठिकानों में घुसकर भी उन्हें मारेगा।
4: आतंकवाद के खिलाफ भी हमारी गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने अपने बदले हुए नजरिए को स्पष्ट किया है। आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारे लिए केवल एक स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि लाइन ऑफ एक्शन है। आतंकवाद के खिलाफ हम दरवाजे पर नहीं बल्कि घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सारी दुनिया ने यह देख भी लिया, हमारी सेनाओं का पराक्रम तो हमेशा ही अद्भुत रहा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तकनीकी युद्ध का एक उल्लेखनीय उदाहरण है।
4: ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में टेक्नोलॉजिकल वारफेयर का एक शानदार नमूना था। इस ऑपरेशन में आकाश तीर, आकाश मिसाइल सिस्टम और ब्रह्मोस जैसी एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम के साथ साथ अनेक लेटेस्ट इक्विपमेंट का भी उपयोग किया गया। इसने साबित किया है कि हमारी सेनाएं बदलाव को समझ भी रही हैं और उसे आत्मविश्वास के साथ उसका उपयोग भी कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारत के उद्योगों पर विश्वास का प्रमाण है।
0: श्री सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के रक्षा तंत्र को मजबूत करने को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने का भी संकल्प लिया है।
4: नई डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के माध्यम से बाई इंडियन आईडीडीएम जैसी व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी गई। सेनाओं के आधुनिकरण के लिए निर्धारित बजट का 75% भाग भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए सुरक्षित किया गया। इस साल हम नया डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर लेकर आ रहे हैं जिसके कारण देश में डिफेंस प्रोडक्शन को एक नई रफ्तार मिलेगी और एक नई ताकत भी मिलेगी।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से संवाद करेंगे, प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे और पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा बल से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। 3 दिन के दौरे पर श्री शाह आज सिलीगुड़ी में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की

0: अध्यक्षता करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज पुणे में 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का संयुक्त रूप से शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं पर 16,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। संसद का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस 5 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रहे हैं। वे सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लगभग 2030 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। इस कार्रवाई में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने करीब 4,25,00,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए हैं। उनके खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सर गारफील्ड सोबर्स के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार और दुनिया भर में क्रिकेट जगत के उनके प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूचना और प्रसारण तथा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री वैष्णव देश के प्रमुख बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से युवा शोधार्थियों के लिए एक देशव्यापी शोध लेख प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है। ये पहल 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्टों के आधार पर छात्रों को मौलिक शोध के लिए प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक वित्त, सुशासन, वित्तीय संघवाद, सामाजिक क्षेत्र के व्यय और सतत विकास जैसे विषयों पर शोध एवं सार्थक विमर्श को बढ़ावा देना है। संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने इनोवेट इंडिया माईगव मंच पर इंडिया पोस्ट शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है। प्रतिभागियों को माईगव पोर्टल के माध्यम से एक मौलिक शुभंकर डिजाइन, उसके लिए उपयुक्त नाम और संक्षिप्त अवधारणा पत्र जमा करना होगा। प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है और अब खेल खबरों के साथ हैं अक्षित वैद्यान।
1: पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने चीन की चेन यू फी के खिलाफ पहला सेट 21-19 से जीता। दूसरे सेट में चेन यू फी ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का निर्णय लिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई है। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। महिला सिंगल्स के फाइनल में कल पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज फ्रांस और इंग्लैंड की टीम आमने सामने होंगी। मियामी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 पर शुरू होगा। स्पेन से हार के बाद फ्रांस का विश्व कप अभियान समाप्त हो गया। हालांकि किलियन एम्बाप्पे ने 8 गोल और 3 असिस्ट के साथ शानदार प्रदर्शन किया है। विश्व कप का फाइनल कल रात न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम में अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार रात 12:30 पर शुरू होगा।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक मूसलाधार वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में आज कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। बिहार, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, ओडिशा तथा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने तटीय आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कल तक अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ईरान ने आज कुवैत पर मिसाइलों और ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमले किए। हमलों के बाद कुवैत ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ान सेवाएं निलंबित कर दीं। ईरान से दागी गई मिसाइलों के कुवैती हवाई क्षेत्र में प्रवेश के बाद अधिकारियों ने लोगों को घरों के अंदर रहने तथा सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का पहला निजी कंपनी द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रक्षेपण के लिए स्काईरूट एयरोस्पेस की टीम को बधाई दी और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि दृढ़ कार्रवाई का सूचक भी है। पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और पीवी सिंधु टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: खेत खलिहान कार्यक्रम सुनने वाले सारे भाण भैया ने आनंद भाई की राम राम। और भाइयों, मौसम की अगर बात करी जाए तो मौसम भाई अपना थोड़ा बहुत 20 तारीख तक परिवर्तनशील है, लेकिन इसके बाद में लगभग अपना जो पूरा हरियाणा प्रदेश है इसमें भाई बारिश की जो आशंका है वह बढ़ रही है। अगर मानसून लौट किया हो तो भाई गर्ज चमक के साथ बूंदाबांदी के आकार हैं, क्योंकि किसान भैया ने बहुत ही ज़रूरत है। और इतनी जो धान वाली बेल्ट हैं उड़े भैया ने धान भी लगा रखे हैं, और जो अपना कुछ रोहतक का, भिवानी का, झज्जर साइड का कुछ नहरी वाला इलाका है भाई, झील झोंके किले जड़ा आ जाए हैं, क्योंकि चौवे की मार के कारण किसान भैया की मजबूरी हो जाए है भाई लगानी पड़े हैं, तो उड़े पर्याप्त बरसात भी नहीं हुई है। आस है कि भाई राम जी रखे सुथरा मीह पानी बरस जाए है तो अपने भाई जो धान की बेल्ट है भाई उड़े तो काम चल जाए, क्योंकि पर्याप्त पानी है भैया दो रहे। लेकिन जड़े भाई वे ऐसी जगह लगाओ हैं कि भाई नहर की भी जरूरत पड़े है, ट्यूबला की भी जरूरत पड़े है, वहाँ पे बरसात की जरूरत भी पड़े है। तो यो है कि भाई आस लग रही है कि कितने की तमी पानी ठीक हो जाए और फिर बढ़िया बरसात हो जाए, तो वे अपने जो बरानी वाले इलाके हैं भाई उसमें कुछ बाजरे की बिजाई है, कितारे चारे की बिजाई है भाई उड़े भी कर लेंगे, तो इस हिसाब से बरसात की जरूरत रही जाए भाई। और ये देखे हैं कि जो भी अपने काम दाम हैं दिनचर्या के काम चल रहे हैं, खास तौर पर दिनचर्या में तो ये आओ है कि भाई अपनी जो फसल है, जब धान की बात आओ है तो भाई धान में अपना पानी का प्रबंध है ये पूरा रखना पड़ेगा। और फिर इसके साथ साथ शुरू में भाई हम कुछ खाद डालना हाँ, तो खाद का आजकल ये हो रहा है कि भाई अपने पास जो ठेका बटाई की जमीन धरती हो रही है, और ठेका बटाई में भी यो देखा जाए कि भाई एक दूसरे का देखम देख भाई कुछ रासायनिक तत्व वाली खादें हैं भाई यूरिया DAP सिंगल सुपर अपनी किसान भाई देखम देख भाई ज़्यादा डाल बैठे हैं और खर्चा इतना कर बैठे हैं कि आखिरी हम थोड़ा हाँ पर धान का बाज़ार भाव जो ठीक नहीं मिलता कई किस्म का, तो फिर वो कहते हैं कि भाई घाटा का सौदा हो गया। तो एक सूझबूझ के साथ अगर हम खेती करें हैं, बिल्कुल ही उसमें तकनीकी अपनाव हैं और जो भी अपनी लक्षण के अनुसार इलाज हम करा हाँ, फालतू खर्चा हम नहीं लगा दे, तो ये पैदावार ठीक मिल पाओ इसमें। इसका मैं बात जब आ जाए चाहे वो हम लेखा जोखा राख की चल रहे हैं, चाहे भाई इसके साथ साथ हम देखे हैं कोई योजनाबद्ध तरीके से हम खेती करा उसमें खर्चा कम हुए, लेकिन साल दर साल जो परंपरागत खेती है भाई करे, ज़मीन हमारे पास बढ़िया है, पर्याप्त पानी है, कितने बढ़िया ज़मीन नहीं है, मार नहीं आंदी, तो उड़े थोड़ी ही हम परंपरागत खेती ते उल्टा अटकी, थोड़ा हाँ अलग ते सोच की भाई कोई कार रोजगार साथ अपना की अगर कोई अलग ते आमदनी किसान भाई इसमें नहीं ले पाओगा तो खेती थोड़ा हम मुनाफे का सौदा नहीं बढ़ पाओगी। आज बहुत सी ज़रूरत है कि वे खेती बाड़ी के साथ साथ हम कोई कार रोजगार ज़रूर अपनाऊँ, चाहे वो ये चौमासे का टाइम भी चल रहा है भाई, तो इसमें चाहे वो खाली ज़मीन है, नाली डोले जड़े भी हम देखा हाँ कि उड़े पेड़ पौधा का जो है कृषि वानिकी का काम भी चल सके, साथ साथ क्योंकि हमारे पास थोड़ा मथन ये बना कि चल लें कि पूरा एक डोला साथ में है, कोई नाली है तो बेचोगर दूँ ना हम आप उसके, चाहे कोई कलोन वाला सफ़ेदा है, पॉपुलर है, ये लगा कि भी हम 4-5 साल में उस तरह लगा आमदनी ले सके हैं। इसके अलावा फिर भाई खेती बाड़ी के साथ साथ बहुत से पशुधन भी भाई रखे हैं, लेकिन आज तो पशुधन है उसमें बीमारियाँ इतनी हो रही हैं कि हम उसकी दिनचर्या की देखभाल नहीं रख पावा हाँ। तो चाहे वो पशु कि तय दम में ब्यात आ जाए, कि ठंड चलिया जा है भाई, कि तय ये देखे हैं कि जेर नहीं डाल रहा, बहुत सी समस्याएं आज पशु में आ रही हैं। वह सारी सिर्फ ये आ रही हैं कि पशु हमारा खुटत ही सीमित रह गया, जो भी हम उसने डाले हैं वह पूरे जो खनिज मिश्रण की मात्रा पशु तीनी ढेण पंदे पशु खुलदा नहीं, तो वह दिक्कतें काफ़ी पशु माओ हैं। तो यो ये है कि भाई हमने खनिज मिश्रण की जो मात्रा है वो पशुधन में चाट बाखर बंटा वो भी हमने मिश्रित डालेंगे, तो उसकी जो पाचन शक्ति है वह बढ़िया बनी रहेगी, पशु ठीक टाइम पर दूध नया दूध रड़ेगा, ठीक टाइम पर उसकी ब्यात आओगी। तो ये बहुत सी सूझबूझ के साथ तरीके अपनाने के कार रोजगार हैं, क्योंकि चाहे वो डेयरी फार्मिंग का हो, बहुत से भाई अलग अलग तरीके भाई खाली ज़मीन पास हमारे पास है, जड़े रेई वाले इलाके हैं, नूनी सार धरती है, उड़े मछली पालन भी भाई कर रहे हैं, क्योंकि उस ज़मीन में कुछ होंदा है नहीं, तो फिर आम उसने खुदवा की मछली पालन के तौर पे उसने इस्तेमाल कर सके हैं। और इसमें जो गवर्नमेंट है, जो सरकारें हैं, वह भी किसान भाइयों की बहुत अनुदान प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि इसकी स्कीम हमने मालूम होनी चाहिए, बशर्ते कोई हम ट्रेनिंग का हिस्सा बना, कोई सर्टिफिकेट, कोई प्रमाण पत्र हमारे पास ऐसा हुए जिस तरह हम आगे चल के उस कार रोज़गार ने शुरू कर सके हैं। क्योंकि कार रोज़गार की जो हर एक बारीकियाँ हैं अगर वो हमने पता नहीं होंगी, फिर हमारा जो धंधा है चाहे वो सहायक धंधा कौन सा भी हो, उसमें पूरा सफल जो है किसान भाई इतना नहीं हो पाओगा। तो यो है कि भाई कार रोज़गार हमने साथ जरूर अपनाना है, खेती बाड़ी के साथ साथ चाहे कोई भी हम छोटा मोटा करके चल रहे हैं। शुरुआत हमेशा चाहे वो डेयरी फार्मिंग की है, मछली पालन की है, या फिर कोई भी हम मुर्गी पालन कर रहे हैं, कोई भी कार रोज़गार, आजकल तो भाई बहुत से अपने छोटे छोटे तालाबा में कोई सीपियाँ की खेती भी करे, कोई मोती की खेती भी भाई करने लग रहे हैं, तो ऐसे छोटी छोटी बारीक की काम धंधे किसान भाई ने अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो टाइम है वो भाई आधुनिक युग है, महंगाई का टाइम चल रहा है, आजकल कृषि यंत्र चाहे आधुनिक यंत्र इतने निकलने लग रहे हैं, उनकी ज़रूरत भैया ने देखा देखे एक दूसरे तले बैठे हैं, लेकिन वो खर्चे बहुत बच गए हैं। तो इस हिसाब से खेती के सीमित साम खर्चा करें, लक्षण देख के हम उसके में चाहे वो दवाई कोई स्प्रे लगानी है हमने, चाहे वो खाद डालनी है, पहले तो ये देखे हैं कि हमारी फसल ने ज़रूरत किस चीज़ की है। हमारे पास वैसे भी हम खेती कर रहे हैं तो खाली ज़मीन रहे है, खाली खेत रहे हैं, जब मिट्टी पानी की जांच हम करवा लें तो बहुत सी बारीकियां का पता लग जाए कि भाई हमारी ज़मीन में कौन से पोषक तत्व।

0: की कमी है, इस हिसाब से जो है उसमें खाद पानी देवा। और फिर इससे खर्चा भी कम होगा, किसान भाई ने पता भी चल लगा, थोड़ी थोड़ी खेती बाड़ी की समझ भी इतनी आओगी कि हमारे जो 16-17 प्रकार के पोषक तत्व हैं इसमें कमी कौन सी खादा की रव है, किस हिसाब से हमने खाद दी थी, साल दर साल का जो लेखा जोखा हम रखें भाई, पिछली साल हमने वैरायटी कौन सी लगाई थी, इसमें पैदावार कितनी ली है, शुद्ध मुनाफा, शुद्ध बचत और शुद्ध खर्चा जो है कितना लगे है, इस हिसाब से अगर हम दिनचर्या में चाहे वो लेखा जोखे की बात कर लें, सूझबूझ की बात कर लें हैं, जब जाके खेती बाड़ी मुनाफा की देन हो पाओगी। इसी प्रकार से चाहे वो पशुधन की बात आओ, चाहे वो सब्जी फसला की बात आओ, क्योंकि परंपरागत फसला तट की बहुत से किसान भाई सब्जी फसला का काम भी कर रहे हैं, सब्जी फसल हम चाहे वो भाई अपना पोली हाउस का काम हम लगा ले हैं, या फिर हाइड्रोफोनिक खेती भी आज के दिन नए तरीके तो लाग रही है, तो वो भी हम अपना की चाल रहे हैं, बशर्ते कोई हम ट्रेनिंग का हिस्सा बना, छोटी छोटी बारीकियाँ उसकी हम समझा, कोई किचन गार्डनिंग के तहत तो बहुत से भाई अपने छत पर ऊपर भी छोटी मोटी सब्जियाँ काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से छोटी छोटी अलग तो आमदनी हम नहीं ले पाएंगे जब तक मुनाफा सौदा नहीं बनेगी। लेकिन बात आज थोड़ी ही जो अपनी अगेती फूल गोभी की काश्त के बारे में करांगे, क्योंकि सब्जी फसल भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा है भाई, वह भी इस्तेमाल मान दे रहे हैं, और भाई लगाओं भी हैं, कुछ अगेत की हैं, कुछ पछेत की हैं, तो आज फूल गोभी के ऊपर बात करांगे, लेकिन थोड़ा डट की बायती रागनी सुनवाऊंगे जगबीर सिंह पड़म्बिया और साथिया की गाई हुई।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: तो यह सुनी बयान रागनी, लेकिन अपना जो खेती बाड़ी में जिक्र चल रहा था भाई, सब्जी फसलां फूल गोभी, तो फूल गोभी की जो अगेती किस्म है भाई, पूसा कात की है, इसमें इसार एक के नाम ते है और स्नोबाल 16 के नाम ते है। बढ़िया ज़मीन अपनी सुधारें और बड़े सर हम 2-3 बाई सुताई करके नरम फोली ज़मीन ने बना की फिर इसमें बिजाई करें। जो भी हमने प्यो तैयार कर रखी थी प्यो साड़ा भाई, जून जुलाई में इसमें रोपाई का जो है टेम आ गया है, तो रोपाई हमने बिल्कुल ध्यानपूर्वक करनी है ताकि फसल जो पौधे हमारी ठीक थे रोपित हो सकें। और मौसम की जो फूल गोभी के लिए वे पौधशाला में बिजाई जून जुलाई ते अगस्त ते पहले हमने कर देनी है। और इस हिसाब से हमने जो है कुछ थोड़ी ही फूल गोभी अनेक प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सके है। भूमि की अगर बात करी जाए तो अच्छी प्रकार 3-4 बार भुरभुरी बना के जुताई करके हम इसने रोपाई करें। तो इस हिसाब से जो भी हम खेती क्यारी करेंगे, बढ़िया किस्मा चुनाव करेंगे, अच्छी जो ज़मीन है वह पानी निकास वाली होनी चाहिए, हमारे पास पानी इसमें नहीं खड़िया रंदा हो ताकि आगे चल के उसमें कोई गलन की सड़न की दिक्कत नहीं आवे। और जो भी खाद उर्वरक हैं भाई, वो थोड़ी ही हमने देसी खादा का प्रयोग कर लिया हाँ तो सबसे बढ़िया रहे, अन्यथा इसमें 50 किलोग्राम नाइट्रोजन 200 किलोग्राम किसान खाद हमने बिजाई के समय दे दी हैं तो ठीक इसमें रहे है। तो ये चलते चलते भाई अनेक रागनी और सुनवा दे हैं गायक कलाकार बालिश शर्मा और उनके साथी।
1: हे रे कोई दुखी कोई सुखी जगत में, दुखी किसी किसी के नरवा

अपना कोई नाती ना बख्त पड़िए पे जो मुंह मोड़े ओ अपना कोई ये साची ना इब कौन से मुंह ते नट से या शर्म तने भी आती ना कोई अगड़ पड़ोसने कहे मरवण ने हे तेरे।

0: यीशु जी और तने और ढाल की बात करें और
1: इसी रागनी के साथ भाइयों खेत खलिहान कार्यक्रम का समय ही पूरा समाप्त चाल लेंगे सारे भण भैया ने राम राम।

आपने खेत खलिहान कार्यक्रम सुना। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब खत्म होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्स पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। तीसरी सभा में शाम 5:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर आपसे फिर मुलाकात होगी।

मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ न्यू जोन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस समय शाम के 5:10 होने वाले हैं। अब हमारी आज की विशेष प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा में कार्यक्रम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

वीर ज़ारा फिल्म से आपने सुना लता मंगेशकर, उदित नारायण और प्रीता मजूमदार की आवाज़ों में ये गीत। गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने, धुन तैयार की थी मदन मोहन ने। कार्यक्रम में अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं, बॉर्डर फिल्म से सोनू निगम और रूप कुमार राठौर की आवाज़ों में। जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीतकार हैं अनु मलिक।

सोनू निगम, रूप कुमार राठौड़ और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे हमारे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आपके साथी दीपांशु का नमस्कार। साथियों, आज है 18 जुलाई का दिन और आज के दिन मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। साथियों, ये दिवस हर साल मनाया जाता है 18 जुलाई के दिन। यह दिन मानवता, समानता, न्याय और सेवा के मूल्यों को अपनाने का अवसर है। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद जैसी अमानवीय व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष किया, आप सभी जानते भी हैं। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 27 साल जेल में बिताए और अपने अधिकारों व समानता की लड़ाई लड़ी। आज के समय में जब समाज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब नेल्सन मंडेला के विचार और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। हमें साथियों जाति, धर्म, भाषा और रंग के आधार पर भेदभाव छोड़कर समानता की भावना को अपनाना चाहिए। नेल्सन मंडेला का मानना था साथियों कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है, और यह कहीं ना कहीं सत्य भी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है साथियों कि वह शिक्षा के महत्व को समझे और अपने ज्ञान का उपयोग समाज की भलाई के लिए करे। और साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज है शनिवार का दिन और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम रोजगार समाचार विशेषांक। तो आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं और आप सभी के लिए पहला रोजगार समाचार कुछ इस प्रकार है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, साथियों इसके द्वारा जूनियर एग्जीक्यूटिव के 54 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें दो प्रकार के पद हैं, आपको बता दें। इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के पद हैं और जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी के पद हैं। और बात करें साथियों योग्यता की, जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल के पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इससे संबंधित क्षेत्र में। और जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास विज्ञान विषय के साथ स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है और इसके साथ डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी भी आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके पात्र होंगे। साथियों, आपके ऊपर उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और आवेदन शुल्क भी आपको जमा करना होगा। आवेदन शुल्क आपको बता दें, सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 1,180 रुपये और एससी एसटी के साथ पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। अंतिम तिथि आपको बता दें 20 जुलाई 2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट नोट करें, hindustanpetroleum.com। वेबसाइट एक बार फिर से आपको बता दें, hindustanpetroleum.com। और अगला रोजगार समाचार साथियों, उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन के द्वारा फॉरेस्ट और विल्ड लाइफ गार्ड के 708 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप 12वें उत्तीर्ण होने चाहिए और UPPET 2025 का स्कोर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। और आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच अगर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन शुल्क आपको बता दें, सामान्य ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के साथ पीडब्ल्यूडी यानी सभी उम्मीदवारों के लिए 25 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि रहेगी साथियों आवेदन करने की 20 जुलाई 2026। और वेबसाइट आप नोट करें, upssc.gov.in। वेबसाइट एक बार दोहरा दें साथियों, upssc.gov.in। और बढ़ते हैं साथियों अगले रोजगार समाचार की तरफ। IBPS के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन, इनके द्वारा साथियों प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी PO और MT मैनेजमेंट ट्रेनी के 6,715 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप स्नातक उत्तीर्ण अगर हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदन शुल्क आपको बता दें साथियों, सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 850 रुपये और इसके साथ एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को 175 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। अंतिम तिथि रहेगी साथियों आवेदन करने की 21 जुलाई 2026। और वेबसाइट आपको बता दें, ibpsreg.ibps.in। वेबसाइट एक बार फिर से आपको बता दें साथियों, ibpsreg.ibps.in। कार्यक्रम में जानकारी और भी देंगे साथियों, लेकिन आइए आपको सुना देते हैं उससे पहले शोर फिल्म से गीत।

साथियों, अभी आपने सुना शोर फिल्म से गीत गाया था मुकेश और लता मंगेशकर ने। गीतकार थे संतोष आनंद और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए साथियों, बढ़ते हैं अगले रोजगार समाचार की तरफ। आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल के 323 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं और इसके साथ टेक्नीशियन ग्रेड थ्री के 6,242 पदों के लिए आवेदन अधिसूचना जारी की गई है। योग्यता की बात करें साथियों, तो टेक्नीशियन ग्रेड वन सिग्नल अगर इस पद के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए संबंधित क्षेत्र में। और टेक्नीशियन ग्रेड थ्री के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप 10वीं पास होने चाहिए और ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए संबंधित क्षेत्र में। और उम्र भी पदों के आधार पर अलग अलग है साथियों। टेक्नीशियन ग्रेड वन के पदों के लिए 18 से 33 साल और टेक्नीशियन ग्रेड थ्री के पदों के लिए 18 से 30 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए। आवेदन शुल्क की बात करते हैं साथियों, सामान्य और इसके साथ OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए ₹500, इसके साथ SC ST और फीमेल उम्मीदवारों को ₹250 का आवेदन शुल्क जमा करना होगा अगर आप आवेदन करना चाहते हैं। और अंतिम तिथि आपको बता दें, 29 जुलाई 2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं और वेबसाइट आप

करें rrbapply.gov.in। वेबसाइट एक बार फिर से आपको बता दें साथ हूँ rrbapply.gov.in। और अगला रोज़गार समाचार है साथियों, जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी JKSSB के द्वारा वार्डर के 288 पदों के लिए आवेदन अधिसूचना जारी की गई है। साथियों, आप 12वीं उत्तीर्ण हैं अगर तो आप आवेदन कर सकते हैं और आपकी उम्र अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। अंतिम तिथि रहेगी साथियों आवेदन करने की 25 अगस्त 2026। और आवेदन शुल्क भी आपको जमा करना होगा, सामान्य और OBC उम्मीदवारों को ₹700, SC ST और EWS उम्मीदवारों को ₹600 का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। वेबसाइट एक बार आपको बता दें साथियों, jkssb.nic.in। वेबसाइट एक बार फिर से आपको आपके लिए दोहरा देते हैं साथियों, jkssb.nic.in। और बढ़ते हैं साथियों अगले रोज़गार समाचार की तरफ। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा सेक्शन कंट्रोलर के 119 पदों के लिए आवेदन अधिसूचना जारी की गई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो साथियों आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और आपकी उम्र 20 से 33 साल के बीच अगर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क आपको बता दें साथियों, सामान्य OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए ₹500, इसके साथ SC ST के साथ फीमेल उम्मीदवारों के लिए ₹250 का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि रहेगी साथियों आवेदन करने की 14 अगस्त 2026। और वेबसाइट आपको बता दें rrbapply.gov.in। वेबसाइट एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देते साथियों, rrbapply.gov.in। और बढ़ते हैं साथियों अगले रोज़गार समाचार की तरफ। ITAT यानी इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी और प्राइवेट सेक्रेटरी के कुल 42 पदों के लिए आवेदन अधिसूचना जारी की गई है। साथियों, अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं और स्नातक की डिग्री के साथ आपकी टाइपिंग स्पीड भी अनिवार्य है। 120 शब्द प्रति मिनट की स्पीड आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये स्पीड है, स्नातक की डिग्री है, तो आप आवेदन कर सकते हैं और आपकी उम्र अधिकतम 35 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदन शुल्क से साथियों सभी उम्मीदवारों को छूट दी गई है, आपको कोई भी आवेदन शुल्क जमा करने की ज़रूरत नहीं है। और अंतिम तिथि आपको बता दें 16 अगस्त 2026 की अंतिम तिथि रहेगी, इससे पहले आप आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट एक बार फिर से आपको बता दें itat.gov.in। वेबसाइट एक बार दोहरा देते हैं साथियों, itat.gov.in। आइए साथियों अब सुनते हैं जख्म फिल्म से गीत, गाया है अलका याग्निक ने, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत दिया है MM करीम ने।

साथियों, अभी आपने सुना जख्म फिल्म से गीत गाया था अलका याग्निक ने, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीत दिया था MM करीम ने। आइए साथियों, बढ़ते हैं अगले रोजगार समाचार की तरफ। बिहार पुलिस सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन यानी BPSSSC के द्वारा पुलिस SI के जनरल कैडर के 150 पदों पर आवेदन अधिसूचना जारी की गई है। आप इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर आप पात्र हैं। अगर आपके पास साथियों स्नातक की डिग्री है और आपकी उम्र सामान्य पुरुष उम्मीदवारों के लिए 20 से 37 वर्ष, सामान्य महिला BC EBC के लिए 20 से 40 वर्ष और SC ST महिला और पुरुष दोनों के लिए 20 से 42 वर्ष, अगर आपके पास इनके बीच की उम्र है और स्नातक की डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क साथियों 100 रुपये रहेगा। सभी उम्मीदवारों के लिए ये जमा करना अनिवार्य है और अंतिम तिथि रहेगी साथियों आवेदन करने की 9 अगस्त 2026। इससे पहले आपको आवेदन करना होगा और वेबसाइट आपको बता दें bpssc.bihar.gov.in। वेबसाइट एक बार फिर से आपको बता दें साथियों bpssc.bihar.gov.in। और बढ़ते हैं साथियों अगले रोजगार समाचार की तरफ। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NICL के द्वारा असिस्टेंट के 500 पदों के लिए आवेदन अधिसूचना जारी की गई है। इसमें आप पात्रता के अनुसार जो है आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए साथियों आप स्नातक उत्तीर्ण अगर हैं तो आप आवेदन जरूर करें और आपकी उम्र 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदन शुल्क साथियों आपको बता दें सामान्य OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए 850 रुपये और इसके साथ SC ST और अन्य उम्मीदवारों के लिए 0 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया है। यानी इन उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट प्रदान की गई है। केवल सामान्य OBC और EWS उम्मीदवारों को 850 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। अंतिम तिथि रहेगी साथियों आवेदन करने की 7 अगस्त 2026 और वेबसाइट आप नोट करें nationalinsurance.nic.co.in। वेबसाइट एक बार दोहरा देते हैं साथियों nationalinsurance.nic.co.in। और बढ़ते हैं साथियों अगले रोजगार समाचार की तरफ।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI के द्वारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के 50 पदों के लिए आवेदन अधिसूचना जारी की गई है। साथियों, अगर आपके पास CA की डिग्री है यानी अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपकी उम्र अधिकतम 25 साल होनी चाहिए और आवेदन शुल्क भी आपको जमा करना होगा। सभी उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये का आवेदन शुल्क जो है जमा करना अनिवार्य रहेगा। सभी उम्मीदवारों को 500 रुपये जमा करने हैं और अंतिम तिथि रहेगी साथियों आवेदन करने की 31 जुलाई 2026। और वेबसाइट अब नोट करें, ICAI.org वेबसाइट एक बार दोहरा देते साथियों, ICAI.org। और बढ़ते हैं साथियों अगले रोजगार समाचार की तरफ। उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विसेज सेलेक्शन कमीशन यानी UPSSSC के द्वारा सुगरकेन सुपरवाइजर के 1182 पदों के लिए आवेदन अधिसूचना जारी की गई है। साथियों, अगर आपके पास एग्रीकल्चर यानी कृषि में स्नातक की डिग्री है तो आप आवेदन कर सकते हैं और इनके साथ आपके पास ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए और UPPET 2025 का स्कोर कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। साथियों, आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और सभी उम्मीदवारों के लिए जो आवेदन शुल्क है वो सामान्य रहेगा। 25 रुपये का आवेदन शुल्क सभी उम्मीदवारों को जमा करना होगा। अंतिम तिथि रहेगी साथियों आवेदन करने की 28 जुलाई 2026। और वेबसाइट आप नोट करें, upssc.gov.in। वेबसाइट एक बार फिर से आपको बता देते हैं साथियों, upssc.gov.in। और बढ़ते हैं साथियों अगले रोजगार समाचार की तरफ। इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा अप्रेंटिस के 750 पदों के लिए आवेदन अधिसूचना जारी की गई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए और स्थानीय भाषा यानी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। साथियों, आपकी उम्र 20 से 28 साल के बीच होनी चाहिए और आवेदन शुल्क आपको बता दें, सामान्य OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए 944 रुपये, SC ST के साथ महिला उम्मीदवारों के लिए 708 रुपये और PWD उम्मीदवारों के लिए 472 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि रहेगी साथियों आवेदन करने की 20 जुलाई 2026। और वेबसाइट आपको बता दें, www.iob.bank.in। वेबसाइट एक बार फिर से आपको बता देते साथियों, www.iob.bank.in। और बढ़ते हैं साथियों अगले रोजगार समाचार की तरफ। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा MTS के पदों के लिए आवेदन अधिसूचना जारी की गई है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। अगर आप 10वीं उत्तीर्ण हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और किसी भी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क जमा नहीं करना है, 0 रुपये आवेदन शुल्क रहेगा। और अंतिम तिथि आपको बता दें साथियों, 26 जुलाई 2026 को शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं और इसमें जो आवेदन है वो ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है। और बढ़ते हैं साथियों अगले रोजगार समाचार की तरफ। IBPS के द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा SO के पदों के लिए आवेदन अधिसूचना जारी की गई है। अगर आप IBPS में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर नियुक्त होना चाहते हैं तो 745 पद कुल हैं और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं साथियों तो संबंधित क्षेत्र में आपके पास स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है और आपकी उम्र साथियों 20 से 30 साल के बीच अगर है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क भी आपको साथियों जमा करना होगा, सामान्य OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए 850 रुपये, SC ST और PWD उम्मीदवारों को 175 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है, ये आपको जमा करना होगा। और अंतिम तिथि रहेगी साथियों आवेदन करने की 21 जुलाई 2026। और वेबसाइट आपको बता दें, IBPS REG.IBPS.in। वेबसाइट एक बार फिर से आपको बता देते हैं साथियों, IBPS REG.IBPS.in। और बढ़ते हैं साथियों अगले रोजगार समाचार की तरफ। हिमाचल प्रदेश
पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एच

0: पीपीएससी के द्वारा पुलिस कांस्टेबल के 734 पदों के लिए आवेदन अधिसूचना जारी की गई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं साथियों, तो आप 12वीं उत्तीर्ण होने चाहिए और आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अंतिम तिथि रहेगी साथियों आवेदन करने की 6 अगस्त 2026, और आवेदन शुल्क सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये का रहेगा। यह आप सभी को जमा करना होगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन करते समय ये आपसे मांगा जाएगा और आप उस समय ये जमा कर सकते हैं। और अंतिम तिथि रहेगी साथियों आवेदन करने की 6 अगस्त 2026। वेबसाइट एक बार फिर से आपको बता दें, hppsc.hp.gov.in। वेबसाइट एक बार फिर से आपको बता देते हैं साथियों, hppsc.hp.gov.in। और बढ़ते हैं साथियों अगले रोजगार समाचार की तरफ। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा टैक्स रिवेन्यू इंस्पेक्टर के कुल 29 पदों के लिए आवेदन अधिसूचना जारी की गई है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप टैक्स या रिवेन्यू इंस्पेक्टर अगर आप बनना चाहते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और आपकी उम्र 21 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदन शुल्क आपको बता देते हैं साथियों, सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 166 रुपये, एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए 76 रुपये और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 16 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि रहेगी साथियों आवेदन करने की 4 अगस्त 2026। इससे पहले आप आवेदन कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप पात्र हैं, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो psc.uk.gov.in ये वेबसाइट है साथियों, यहाँ पर आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट एक बार फिर से आपको बता दें, psc.uk.gov.in। साथियों इसके लिए आवेदन शुल्क आपको बता देते हैं, सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए 166 रुपये का, एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए 76 रुपये का और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 16 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। आवेदन करते समय आप ये जमा कर सकते हैं, और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो 4 अगस्त 2026 इसकी अंतिम तिथि रहेगी, उससे पहले आप आवेदन करें। और बढ़ते हैं साथियों अगले रोजगार समाचार की तरफ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रेंटिस के 95 पदों के लिए आवेदन अधिसूचना जारी की गई है। इसके लिए साथियों विभिन्न पद हैं, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पद हैं, डिप्लोमा अप्रेंटिस के पद हैं और ट्रेड अप्रेंटिस के पद हैं। स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए साथियों, अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं। 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए संबंधित क्षेत्र में, अगर आप डिप्लोमा अप्रेंटिस पर आवेदन करना चाहते हैं। और ट्रेड अप्रेंटिस अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, तो ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और इसकी अंतिम तिथि रहेगी 28 जुलाई 2026। आज का ये रोजगार समाचार साथियों यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे किसी अन्य कार्यक्रम में, होती रहेगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। शाम के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निजी क्षेत्र के पहले कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण पर स्काई रूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि से भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि यह निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की बढ़ती ताकत

0: स्वदेशी नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि देश के युवाओं को आगे आकर नवाचार में योगदान देने के लिए प्रेरित करेगी।
1: भारत और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई। दो काम किए हैं, एक तो आसमान में नए पौधे गाड़ दिए हैं और दूसरा जमीन में भी उस रूट्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस उपलब्धि पर स्काईरूट एयरोस्पेस को बधाई दी है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई और 10 घायल हो गए। यह हादसा रामोल गात्राड रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुआ। सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के साथ बचाव अभियान में जुट गई। हादसे में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संसद का मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और उन्हें पारित किए जाने की संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के जुमागाछा स्थित सीमा सुरक्षा बल शिविर का दौरा किया और बीएसएफ कर्मियों से बातचीत की। श्री शाह ने पौधा भी लगाया और प्रहरी सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने, जन्म और मृत्यु पंजीकरण तथा कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा पर भी चर्चा हुई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि यह रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार संजीव श्रीवास्तव को दिया जाएगा। गैर फीचर फिल्म श्रेणी में शिवपाल सिंह कांग को परात 41 डिग्री चया मगावर के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिलेगा। बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार आनंद एल रॉय को स्टैचू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए दिया जाएगा। और खेलों में पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे स्थान के प्लेऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार देर रात 2:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज न्यूज ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले एक नज़र आज के शेष कार्यक्रमों पर। आज रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 10 बजे। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। बागों में खाद पानी प्रबंधन

0: कार्यक्रम एक फिल्म से होगा रात 9:15 पर। सुनिएगा लव इन टोक्यो फिल्म से चुनिंदा गीत। और फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल के मुख्य आकर्षणों पर। कल रात 9:30 पर सुनेगा कार्यक्रम संसद के समक्ष मुद्दे, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। बाल श्रोताओं का अपना मनपसंद कार्यक्रम बाल कुंज होगा प्रातः 8:30 पर। युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार आप सुन पाएंगे रोजाना की तरह शाम 5:30 पर। इसमें कल होगा कार्यक्रम युवा पसंद। बहनों का कार्यक्रम घर आंगन सुनिएगा दिन में 12:30 पर। समसामायिक विषयों पर चर्चा के साथ फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुबह सवेरे अपने सुनने वालों के लिए लेकर आएंगे प्रातः 7:35 पर। कार्यक्रम खेत खलियान में दिन में 2:30 पर चर्चा का विषय होगा मिट्टी पानी की जांच का महत्व। कार्यक्रम कृषि जगत में शाम 6:20 पर डॉक्टर अनुराग बरवड़ की बातचीत का विषय होगा बरसात में पशुधन की देखभाल। और शाम 7:00 कार्यक्रम ग्रामीण संसार में आप सुन पाएंगे कवि गोष्ठी। अब जानकारी कुछ संगीत कार्यक्रमों की। कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन सकते हैं प्रातः 7:15 पर और रात 8:25 पर। फरमाइशी फिल्म संगीत का सजीव फोन इन कार्यक्रम फोन इन फरमाइशी सुनिएगा दिन में 1:10 पर। कहिए जनाब कार्यक्रम आप सुन सकते हैं रात 10:00। प्रातः 9:00 सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक कलाकार एक फिल्म से। ये कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं शाम 7:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। अभी आपने सुनी कार्यक्रम रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 यानी 1143 किलोहर्ट्ज़। न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर शाम के 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय परिसर में पौधारोपण के साथ पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस अधिकारियों से नशे की लत के शिकार हो रहे युवाओं को नशों के जाल से बाहर निकालने का आह्वान किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने सेक्टर 43 स्थित न्यायिक परिसर में बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि तकनीक से आम लोगों की न्याय तक पहुंच आसान हुई है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के गंगवा गांव में सीवेज टैंक की सफाई के दौरान मजदूर की मौत मामले में मुख्य सचिव और हिसार के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया। अब समाचार विस्तार से। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय परिसर में पौधारोपण के साथ पंजाब हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। उनके साथ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पौधारोपण किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल संवैधानिक दायित्व ही नहीं बल्कि

0: प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने नागरिकों से अधिक वृक्ष लगाकर तथा उनका संरक्षण कर देश के हरित आवरण को बढ़ाने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता केवल लगाए गए पौधों की संख्या से नहीं बल्कि उनके संरक्षण, देखभाल और वृक्ष के रूप में विकसित होने से आंकी जाएगी। मानसून अवधि के दौरान चलने वाले इस अभियान के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के न्यायालय परिसरों, विधिक सेवा संस्थानों, न्यायिक आवासीय परिसरों तथा अन्य उपायुक्त सार्वजनिक स्थलों पर लाखों पौधे लगाए जाएंगे। यह अभियान पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ के वन विभागों के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल देसी, फलदार, औषधीय एवं छायादार प्रजातियों के पौधों के रोपण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं बल्कि समाज, संस्कार और मानवता की रक्षा का अभियान है। वे आज करनाल के मधुवन स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी में एक पुलिस एक संकल्प ड्रग्स मुक्त हरियाणा कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों व 600 से अधिक थाना प्रभारियों से सीधा संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नशा अनेक परिवारों को बर्बाद कर रहा है और युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर धकेल रहा है। ऐसे में इसे जन भागीदारी के माध्यम से जन आंदोलन का स्वरूप देना समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों से नशे की गर्त में जा रहे युवाओं को नशों से बाहर निकालने का आह्वान किया।
1: आपके कंधों पर केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी नहीं है बल्कि समाज की आत्मा की रक्षा करने का भी महान दायित्व आपके कंधों के ऊपर है। आप केवल अपराधियों का सामना नहीं करते हैं, आप हर दिन समाज को विश्वास की रक्षा भी करते हैं। साथियों, आपकी वर्दी केवल अधिकार का प्रतीक नहीं है बल्कि सेवा, त्याग, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। मैं आज आप सभी से एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, पढ़ करके आगे बढ़े, परंतु कई बार व्यक्ति शौक के अंदर नशे के नजदीक चला जाता है। साथियों, उसको बचाने का हमने काम करना है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग की त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन भी किया। पत्रिका में विदेशों से प्रत्यर्पित कर भारत लाए गए अपराधियों सहित विभाग की प्रमुख उपलब्धियों और महत्वपूर्ण अभियानों का उल्लेख किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज चंडीगढ़ के सेक्टर 43 स्थित न्यायिक परिसर में बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशगण तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने अधिवक्ताओं और बाहर से आने वाले लोगों की गाड़ियों की पार्किंग के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनाने का सुझाव दिया।
2: हम लोगों ने 4.5 एकड़ जमीन में लगभग 66 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके लगभग 1100 से अधिक गाड़ियां यहाँ पार्क हो सके सुविधा जुटाने का प्रयास किया। आने वाले रिटिकेंट को भी और हमारे सभी लॉज बंधुओं को भी उचित स्थान और सम्मान पूर्वक पार्किंग करने की जगह मिले उसके लिए प्रयास किया। और हमने यहाँ की हाईकोर्ट में भी 3.5 करोड़ रुपया खर्च करके ओपन पार्किंग प्लेस भी बनाया जिससे वहाँ भी ये सुविधाएं मिल सके। मैं सोचता हूँ कि पार्किंग की सुविधा हमने जुटा दी लेकिन इस पार्किंग का उपयोग सही ढंग से हो इसके लिए आपको चिंता करनी पड़ी।
0: श्री कटारिया ने अपने संबोधन में नए आपराधिक कानूनों का जिक्र भी किया और त्वरित न्याय पर बल दिया।
2: एडीबेस एक्ट में सबसे ज्यादा सजा का परसेंटेज अगर कहीं बना है तो 85% आज की तारीख में चंडीगढ़ का और पंजाब का बना है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि न्याय समय पर भी मिले, न्याय जो है न्याय की तरह सीखे। तो मैं सोचता हूँ इस व्यक्ति से आपसे सर्वोच्च व्यक्ति और कोई यहाँ नहीं हो सकता। आप वहाँ बैठ करके हमारी मदद कर सकते हैं, करें ताकि हम इस क्षेत्र के लोगों को जल्दी और सस्ता न्याय दिला सके।
0: भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पार्किंग को लेकर राज्यपाल का आभार व्यक्त किया और पार्किंग की व्यवस्था को लेकर उनके सुझाव का अनुमोदन किया।
3: ये लॉयर्स की और लिटिगेंट्स की दोनों की ही रिक्वायरमेंट थी, उनके लिए पार्किंग का कोई बहुत अच्छा स्पेस अवेलेबल नहीं था, उसका एक बहुत ही अच्छा सुंदर इन्होंने निदान किया है और मैं इनकी उस बात का भी पूरा पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ जिसमें उन्होंने वकील साहबान से ये अपील किया कि आप उसको ठीक ढंग से इसका सदुपयोग कीजिए, ठीक ढंग से पार्किंग कीजिए और जो एक फैसिलिटी उनको दी गई है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए।

0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज चंडीगढ़ में कहा कि भारतीय न्यायपालिका प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रौद्योगिकी का उपयोग न्याय तक पहुंच को मजबूत करता है, लेकिन AI का इस्तेमाल वास्तविक फैसले देने के लिए नहीं बल्कि केवल प्रतिक्रियात्मक सहायता जैसे कि मामले के प्रबंधन और ट्रांसक्रिप्शन के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर AI के उपयोग से जुड़े स्पष्ट नियम और दिशा निर्देश अपलोड किए गए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि तकनीक अब संवैधानिक साधन बन चुका है, इससे न्याय तक पहुंच आसान हुई है।
1: जो आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो इंडियन जुडिशरी वर्ल्ड में नंबर वन पर टेक्नोलॉजी को यूज करने में। गरीब आदमी को, गांव के आदमी को, दूर दराज के आदमी को अपने हाईकोर्ट में जाना उसको लगता था बहुत दूर है। अब टेक्नोलॉजी ने उस ज्योग्राफिकल डिस्टेंस को डिसमेंटल कर दिया है। आप अपने शहर में, अपने गाँव में, अपने वहीं से बैठ करके केस को फाइल कर सकते हैं, वहीं से आपका वकील उस केस को बहस कर सकता है और आप वहीं बैठे अपने केस की कहाँ पे क्या स्थिति है, कौन सी अगली तारीख लगी है, वो सारा विवरण ले सकते हैं।
0: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने हरियाणा के गंगवा गांव में एक सीवेज उपचार संयंत्र के टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैसों के कारण एक मजदूर की मौत और एक के घायल होने के मामले में हरियाणा के मुख्य सचिव और हिसार के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। खबरों के अनुसार मृतक मजदूर के परिवार ने ठेकेदार और संयंत्र प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के टैंक में दाखिल हुए थे। आयोग ने मीडिया की खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उन दावों को गलत बताया है जिनमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निवेश प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इन दावों में कहा गया है कि 22,000 रुपए के शुरुआती निवेश पर नागरिकों को हर महीने 25 लाख रुपए की कमाई की गारंटी दी जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह वीडियो फर्जी है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किया गया है। यूनिट ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय परिसर में पौधारोपण के साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुलिस अधिकारियों से नशे की लत के शिकार हो रहे युवाओं को नशों के जाल से बाहर निकालने का आह्वान किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने सेक्टर 43 स्थित न्यायिक परिसर में बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत

0: भैया ने आनंद भाई की राम राम। और फिलहाल भाई अपना मौसम की अगर बात करी जाए तो ये देखे हैं कि जो अपना पूरा हरियाणा प्रदेश है इसमें जो भी ज़रूरतमंद के हिसाब से जो बरसात होनी थी इब वो नहीं हो पाई है। बस ये आस है कि भाई जड़े धान वाली बेल्ट थी वहाँ तो भाई पर्याप्त पानी है भाइयों पे, वहाँ धान काफ़ी भाइया लगा भी लिए हैं। लेकिन जो कुछ झील जोक के इलाके थे भाई कितने नहर वाली जमीनी थी भाई जड़े चौवे ऊपर हैं अपना कुछ रोहतक का इलाका झज्जर का भिवानी का कुछ नहरों के साथ साथ जो अपनी जमीन जड़े लागे है कुछ थोड़े है बड्ढे के कारण भाई किसान भाइया की मजबूरी हो जाए है भाई धान लगान की। अन्यथा और क्यों है कि और कोई फसल ऐसी उसमें होन नहीं पाती। अगर किसान भाई बाड़ी लगाओ हैं बाजरा लगाओ हैं तो भाई वो बरसात के कारण या फिर कितने झील जोक के किला में पानी रुकण के कारण निकल जा है गल जा है फिर वह किसान भाई का थोड़ी ही दोरी मार आ जाओ है। तो इस हिसाब से थोड़ी ही हम बात जब बरसात की बाट देखे हैं भाई अपना 20 तारीख तक थोड़ा हा मौसम परिवर्तनशील लेकिन उसके बाद में अगर राम जी रखे तो भाई एक अच्छी खासी बरसात हो जाए है। चाहे वह धान वाली बेल्ट की अगर बात कर ले हैं या फिर कुछ अपना जड़े भाई धान लगा रहे हैं भी उनका काम भी बढ़िया चल जाए पानी की पूर्ति हो जाओ है। क्योंकि जो धान की फसल है वह बहुत से भाई ने आजकल कुछ DSR विधि के द्वारा भी बोई गई थी कुछ भाई अपना कद्दू कर की वैसे भी धान लगान लाग रहे हैं। और ये देखे हैं कि जड़े बरसात हो जाए तो भाई जो अपने बरानी वाले इलाके हैं किते बागड़ की धरती है भाई बागड़ वाले इलाके हैं टिब्बा सार धरती है तो उड़े भी भाई अपने चाहे वो बाजरे की बात कर लें हाँ कि गवार की बात कर लें कि हरे चारा की बात कर लें तो बरसात की इस टाइम के ऊपर किसान भैया ना हर एक जगह ज़रूरत है। अगर बरसात हो जाए तो बढ़िया किसान भैया का जो है काम चल जाए है। अन्यथा के हो कि भैया अपने जो धान वाले इलाके हैं उनमें भाई चाहे आजकल तो सोलर के हिसाब से चल रहे हैं लेकिन हर एक के पास सोलर पंप नहीं है भाई के पास पूछते हैं इस हिसाब तो जो डीजल की खपत है वह किसान भैया की बढ़ जाए है थोड़ी लागत उसका मैं कृषि में अपनी खेती बाड़ी में लागत दूनी आ जाए है। लेकिन यो ये बताओ है कि भाई थोड़ी ही हम परंपरागत खेती ते उल्टा अटकें थोड़ी ही हम आधुनिक खेती चल रही हैं बहुत से भाई कोई कार रोजगार साथ अपना ले हैं तो उसमें अलग ते किसान भाई आमदनी मिल जाए है तो इसमें ठीक रहा है। और अब की बार भी देखा गया था एक दो गाँव में भाई अपने शिकायत ये भी देखा था कि बहुत से भाई इस टाइम के ऊपर जड़े बिजली वाले कनेक्शन हैं खास तौर पे धान वाली बेल्टा में तो हैं ही हैं वैसे भी कितने भाई अपने तार मोटर डाल के भाई अपने काम चलाओ हैं कितने नहर के पास में अगर ट्रांसफार्मर दे रखा है तो आज ये थोड़ा हाँ करंट ते बचाओ क्योंकि करंट लगने से काफ़ी किसान भैया के कहीं ना कहीं सुनन में आ जा है कि भाई वहाँ भी अनचाही अनहोनी होगी। और ये अनहोनी थोड़ी भाई हमें सूझबूझ के साथ काम नहीं कर दे थोड़ी कितने लापरवाही बरत ली हैं जब जाके ये हुए हैं तो भाई थोड़ा यो ज़रूर ध्यान रखें कि जब भी हमने कोई बिजली से संबंधित मोटर या फिर कोई काम ऐसा करना है तो भाई बिल्कुल प्रॉपर कुछ दस्ताने वगैरह काम जो है इसका मैं इस्तेमाल कर लें दस्ताना के साथ साथ थोड़ा हा ये देखे हैं कि भाई चाहे वो हम बचाव में ही बचाव क्या करें कि भाई पूरी उसकी जानकारी चाहे वो मोटरा की बात आओ है चाहे भाई वो कितने न कितने ये देखे हैं कि भाई बिजली वाली जो मोटर हैं कनेक्शन है ट्रांसफार्मर हैं उसके में कितने फ्यूज उठ जाए है किसान भाई का कितने फ्यूज लगाना पड़ जाए है। तो ये इस हिसाब से देखे हैं कि चाहे वो कोई भी बिजली का काम हो हमने बिल्कुल सूझबूझ से बारीकी हैं जो इसका कर लेंगे तो ठीक रहे है। और इसमें चाहे खेती बाड़ी में कोई भी अगर हम बात करें हैं चाहे वह खर्चा तो कम करने की लगा लिया हाँ आधुनिक खेती की लगा लिया हाँ तो थोड़ा हाँ किसान भाई तो बढ़िया काम कर रहे हैं चाहे वो मधुमक्खी पालन का कर रहे हैं डेयरी का कर रहे हैं या फिर कोई हमने ये देखे हैं कि चाहे आगे चाल की थोड़ा बहुत कोई मुर्गी पालन का कर रहा है कोई आजकल आधुनिक युग में कितने न कितने भाई शीप वाली खेती भी हो रही है मोतियाँ की खेती भी हो रही है तो कोई ना कोई कार रोजगार किसान भाई का साथ लागता अगर हो जाए है तो उसमें काम चाली जा है। काम का यो है कि भाई हम खर्चे थोड़े कम करें सूझबूझ के साथ खेती करें भाई देखम देखा आजकल तो हो रहा है कि किसान भाई ठेके बटाई की धरती हो रही है महंगवाड़े ठेके हो रहे हैं लेकिन देखम देख भाई उसने 3 गेरे हमें 4 गेरू उसने 4 गेरे में 5 गेरू इस हिसाब से अंधाधुंध जो हम रासायनिक खाद का प्रयोग कर लाग रही हाँ, लेकिन जो हमारी ज़मीन है वह ज़मीन जवाब दे रही है ना, तो उसमें वो पोषक तत्व तो रह रहे जो पहले अपनी देसी खाद पड़िया कर दी, वह खाद का प्रयोग नहीं हो रहा क्योंकि वह खाद है ही नहीं। प्रयोग तो जब वो है कि जब अपने पास में पूरा प्रॉपर पशुधन रहा करता भाई अपने खेत में, और जब भी घर अपने बड़े बुजुर्ग भाई आली न्यारा होया करता, पाली न्यारा होया करता, और कुरड़ी का जो गोबर था पुरानी गली सड़ी खाद तैयार होया कर दी उसमें, तो ये जाके इसमें देखा कर दे के पर्याप्त तो बचत भी आया कर दी, खर्चा कम होया कर दा, उतनी लागत नहीं थी खेती की, पूरा शुद्ध मुनाफा था। लेकिन आज जो हम खर्चे कर रहे हैं, एक अंधाधुंध कर रहे हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड का, दवाइयाँ का हम कह ले हैं, खाद पानी का हम कह ले हैं, तो ये अनचाहे जो खर्चे हैं वो किसान भाई कर बैठे हैं। फिर जाके इसमें क्या कहें हैं कि भाई बचत कमाई, बचत का मतलब तो ये है कि भाई जब भी हम इन खर्चा घटाओगे एक दूसरा ने देख की नहीं, अपनी जो खेती की लक्षण देख की, कोई ये देखे हैं कि हमारी खेती ने ज़रूरत किस हिसाब की है, उसके हिसाब से हम उपचार इसमें करके चाल लेंगे, उस हिसाब से हम खाद पानी इसमें डाल लेंगे, जब जाके हमारी जो लागत कम होगी। लागत का यो है कि भाई थोड़े ही हम खर्चे घटाएं, शुद्ध मुनाफा लेखा जोखा खेती बाड़ी में जरूर रख के चल लें। जब तक हम लेखा जोखा किसान भाई नहीं रखेगा तो फिर यो घाटे का सौदा हो पाओगा, क्योंकि हमने इसमें बेरा नहीं लगता कि भाई हमारे खर्चे कितने हो लिए हैं, शुद्ध मुनाफा हमारे पास कितना आया है, तो ये हिसाब से। और भाई चाहे बागा की बात कर लें, हम खेती बाड़ी तो थोड़ा अलग अटकी, भाई चौमासा का टाइम चल रहा है, चौमासे में भाई जो भी हम बाग लगाओ वहाँ, तो बाद बाग में भाई जो भी अपनी दिनचर्या काम है, चाहे वो खाद पानी का प्रबंध है या फिर नए लगाए गए बागा में हम किस तरीके से खाद डाल लें, किस हिसाब से पानी देवें, किस हिसाब से खुदाई नड़ाई गुड़ाई हमने ज़रूरी है, तो आज चौपाल में भाई वो डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, तो ये बातचीत जो है भैया ने सुनवा दे हैं बागा में खाद पानी प्रबंध। भाइयो आज बात करेंगे बागों में खाद पानी प्रबंधन इस बारे में, और इसकी पूरी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ चौपाल में मौजूद हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, जो कि फिलहाल अपनी सेवाएं दे रहे हैं विभागा अध्यक्ष फल विभाग महाराणा प्रताप उद्यानिकी विश्वविद्यालय करनाल में। डॉक्टर साहब आपका चौपाल में स्वागत है।
1: नमस्कार जी।
0: जी डॉक्टर साहब, बात करें हैं जब बात आओ खाद की, क्योंकि जो अपने बाग हैं और फिलहाल अपना टाइम चल रहा है, ये मान के चल रहा है कि चौमासे का टाइम है, बरसात की भाई कहीं कहीं हो रही है, किते किते बाट देख रहे हैं किसान भाई, लेकिन जब बात आव है अपनी जो बाग की, क्योंकि डॉक्टर साहब बागा में एक तो सबसे पहले यो देखा जाए किसान के भाई के पास अपना खेत कैसा है, जमीन कैसी है, और फिर उसकी कोई रूपरेखा तैयार किस तरह हम करें हैं, किस तरह उसकी योजना बनाओ हैं, तो डॉक्टर साहब शुरुआत करें हैं अपने पास फिलहाल तो अगर हमने बाग लगाना तो जमीन कैसी हो, उसमें कौन सा बाग ठीक रहो डॉक्टर साहब?
1: जी, बाग लगाने के मुख्यतः दो समय हैं
0: जी,
1: जनवरी फरवरी, यानी फरवरी से और 15 मार्च के आसपास हम कहते हैं, तो दूसरा अब जुलाई से लेके 15 सितंबर तक सिफारिश रहती है, तो जो फलदार पौधे हैं
0: जी,
1: जितने भी, उनके लिए ये जो बारिश का मौसम है, वर्षा ऋतु का जो मौसम है, ये बिल्कुल उपयुक्त है। इसमें थोड़ा सा जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि भाई बारिश के समय से पहले, जैसे आपने मेरे से पूछा
0: जी,
1: तो उसकी जो बाग लगाने की जो रूपरेखा है, रूपरेखा का मतलब जैसे रेखांकन वगैरह है, कौन सा पौधा हमने लगाना है, तो वो तैयार कर लें। अब सही समय है, आज के दिन बाग लगाने का बिल्कुल उपयुक्त समय है, अब आने वाला 1-1.5 महीना हमारे लिए। इसके लिए जो हमारी नॉर्मल जो जमीन है, जितने भी हैं, मुख्यतः जैसे अमरूद की ही हम चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा नींबू जाति के जितने भी बाग हैं थोड़ा सा खारीपन को नहीं सहन कर पाते आमतौर पर, तो इसके लिए हम अपनी रूपरेखा तैयार करें, जैसे 6x6 मीटर की हम सिफारिश करते हैं, तो पूर्ण रूप से जो गड्ढे का जो साइड है, अमूमन किसान भाई गड़बड़ कर लेते हैं थोड़ी सी अपना समय बचाने के लिए और लालच बचाने के लिए, तो आकार साइज गड्ढे का पूरा रखें, कोई भी बाग लगाना है पूरे का मतलब है 3x3 फीट या 1x1 मीटर, क्योंकि मुख्य रूप से वो पौधे की नींव है, जैसे हम मकान बनाते हैं मकान की नींव रखते हैं ना, वैसा ही काम है, वो पूरे आकार का गड्ढा बनाएं 1 फीट 1 फीट घन करके, और उसमें फिर पूर्ण मात्रा में जैसे ऊपर की आधी मिट्टी और उतनी मात्रा में सड़ा हुआ गोबर का खाद डालें, कुछ उसमें जो दीमक से बचाने के लिए पाउडर हैं जैसे वो पाउडर मिलाएं, और सिंगल सुपर फास्फेट जो पौधे की जड़ों को स्थापित करने में या पौधों को स्थापित करने में हमेशा योगदान देती रहती है वो अवश्य मिलाएं। सारी चीज़ों को लेके इनको मिक्स करके गड्ढे को भर दें, कुछ टाइम तक उसको

0: गड्ढे को भर के छोड़ दें। और अब जो जैसे आज के दिन जैसे जुलाई का है, जुलाई के आखिरी या आगे अगस्त में,
1: बिल्कुल
0: तो अपनी मनपसंद, जैसे मनपसंद का मतलब ये है कि भाई अमरूद है या आपका जो नींबू जाती की मनपसंद किस्म इसार सफेदा की जैसे सिफारिश करते हैं,
1: जी
0: तो वो एक रजिस्टर्ड नर्सरी से, पंजीकरण नर्सरी से या सरकारी नर्सरी से लेके ही लगाएं, उसका बाकायदा बिल लें। और पौधे जो हैं कोशिश करें कि शाम के टाइम लगाएं या सुबह जल्दी लगाएं,
1: जी
0: थोड़ा सा उसको स्थापित होने में आराम रहता है। पौधे की जो जो जो जो जो गाची जिसको हम बोलते हैं, प्रयास करें वो लेके आते समय तक और खेत में लगाने तक वो हिले डुले ना, टूटे नहीं। अगर गाची समेत तो हमने यूं का यूं पौधे को रख दिया, वो मिट्टी अगर हिले ही नहीं, उतनी मिट्टी गड्ढे की हटा के अगर उसको फिक्स कर दिया, सेट कर दिया, मेरा ये मानना कि 100% पौधे चलेंगे। वो
1: जी
0: पौधा लगा दो, उसका हल्का सा एक थावड़ा बना लो चारों तरफ 1 बाई 1 फीट का, शुरू में पौधे को
1: बिल्कुल
0: कम पानी की जरूरत होती है,
1: जी
0: वो लाइन जरूर बनाएं। वो लाइन लगा बनाने के बाद पौधे को पानी से भर दें। शाम के टाइम ये फायदा रहता है, सुबह अर्ली ये फायदा रहता है कि पानी उड़ता नहीं, वाष्पीकरण कम होता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर
0: उसको
1: साहब,
0: ध्यान से लगाएं, पौधा अच्छे से लगेगा।
1: रोपित अच्छी तरीके से हम कर
0: हाँ
1: ले
0: रोपित,
1: ताकि उसकी जड़ जो है खराब ना हो पाए। डॉक्टर
0: बिल्कुल
1: साहब,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: डॉक्टर साहब इसमें फिर एक बात और आ जाए, क्योंकि जब बाई योजना बना हुए बहुत से किसान भैया ने ये पता नहीं होता कि हमारे पास मिट्टी, एक तो जैसे कि दोमट मिट्टी होगी, कहीं कहीं अपने बालू रेत हो गया, फिर किता हो गया अपना कुछ नहरी वाला इलाका, तो उसमें डॉक्टर साहब मान लो हम बात करें थोड़ी टिब्बा सार धरती की, जड़ ऊंचाई वाले
0: जी।
1: इलाके हैं, उसमें कौन से डॉक्टर साहब इसमें जैसे नींबू जाति वगैरह तो संबंधित हो गए, कौन से इसमें बाग ठीक अमूमन चल लेंगे डॉक्टर साहब?
0: हाँ बिल्कुल, जैसे एक और सिफारिश ये है कि जब हम बाग लगाते हैं तो उसका जो मिट्टी का जो नमूना है वो भी सरकारी जो प्रयोगशाला है या निकट के जो जो जो जो जैसे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है या महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है, इनके केंद्रों से आप उसके किसान भाइयों को सलाह है कि वो नमूना जरूर जाँच करवा लें। उसका ये फायदा होगा, उसमें एक ये सिफारिश आ जाती है कि आपके मिट्टी का और पानी का ये स्तर है, इसमें ये पौधा कामयाब होगा और ये नहीं होगा, वो जो सिफारिश है उसके अनुसार सारे किसान भाई आगे बढ़ें। आपने सवाल पूछा है कि टिब्बे में, तो टिब्बे में भी आप पौधे लगा सकते हैं। जमीन को थोड़ा सा कोशिश करें थोड़ा सा समतल कर लें, उसके उसके जैसे सीढ़ी नुमा हो जाए वो,
1: जी
0: और उसमें आप पौधे लगा सकते हैं। परंतु उसमें पानी की जो व्यवस्था रहेगी, वो जो स्प्रिंकलर जिसको हम बोलते हैं, फवारा सिंचाई जो बोलते हैं, उस फवारा सिंचाई के माध्यम से आप उन पौधों को का जीवन रक्षण कर सकते हैं। और टिब्बे में जैसे जो जो नींबू जाति के पौधे हैं वो अच्छे से हो सकते हैं, बशर्ते टिब्बे में जैसे मैंने शुरू में बताया था खारापन नहीं होता,
1: बिल्कुल
0: तो नींबू जाति का बाग टिब्बे में आप लगा सकते हैं, जो सीढ़ी नुमा जैसे मैंने बताया फव्वारा सिंचाई की पद्धति के हिसाब से लगा सकते
1: जी,
0: हैं।
1: टपका सिंचाई अपना लें और भी बढ़िया रहे डॉक्टर साहब
0: हाँ टपका
1: इसमें।
0: सिंचाई बाग लगाने के लिए सबसे उत्तम विधि है सिंचाई की। इसमें थोड़ा सा क्या रहता है कि शुरुआती दौर में किसान भाइयों के ऊपर थोड़ा सा जो खर्चा जिसको हम कहते हैं पैसे के हिसाब से, वो थोड़ा सा वजन डलता है, परंतु वो 2 से 3 साल में, 3 साल में लगभग वो बराबर हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसके फायदे ये हैं कि कम पानी में पौधे आपके बाग लग जाता है, पानी की बचत होती है। दूसरा क्या है कि इसमें निरंतर पानी हम पौधे को दे सकते हैं, क्योंकि जो मीटर आपने जो अपना बिजली के हिसाब से ऑन ही करना है, किसान भाई को कोई हरकत या कोई कई बार होता है कि आज पानी है आज नहीं है, तो ड्रिप के मामले में एक निश्चित जो है सिंचाई की व्यवस्था रहती है, जितनी ज़रूरत होती है पौधे को उतना पानी मिलता है। और थोड़ा सा क्या है कि पानी बहता नहीं, खराब भी नहीं जाता,
1: और
0: और
1: खरपतवार भी
0: बाएं
1: नहीं
0: दाएं
1: आएंगे।
0: नहीं जाने से खरपतवार भी नहीं पैदा होते।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही उत्तम विधि है ये।
0: हाँ
1: और फिर डॉक्टर साहब इसमें बात आ जाए है, जब हम शुरुआत में कोई भी हम छोटा पौधा रोपण करें हैं, बाग लगाओ हैं, उसकी संभाल हम शुरू तक किस तरीके तक कर सके हैं, क्योंकि हमारे एक पास शुरू में एक तो देसी खाद का प्रबंध, या फिर आजकल जो देसी खादें पर्याप्त रूप से हमारे पास नहीं होती डॉक्टर साहब, क्योंकि वो पशुधन नहीं रहे आज हमारे पास, तो आज जो रासायनिक तत्व हैं उसमें हम कौन से इस्तेमाल कर
0: जी
1: सकें?
0: जी जी आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। जैसे आपने बताया छोटा पौधा लगाने के बाद हम देखभाल, थोड़ा सा एक दो बिंदु इसमें मैं बताऊंगा। हमने पहले बात करी थी कि उसको उसकी गाची को यूं का यूं रोपित करने का प्रयास करें गड्ढे में,
1: जी
0: और उसमें निरंतर नमी बनाए रखें। जैसे गर्मी में अगर अब बारिश में पानी नहीं आता तो सप्ताह में कोशिश करें कि भाई सब साथ

0: 10 दिन में एक बार पानी जरूर दें। एक और समस्या कई बार किसान भाइयों के ध्यान नहीं देने से आ जाती है, पौधा जब हम लगाते हैं तो कलमी पौधा होता है, उसका नीचे का जो भाग होता है जिसको हम रूट स्टॉक या मूलवरंत बोलते हैं, एक जोड़ होता है,
1: जी
0: जोड़ से नीचे भी कई बार ध्यान नहीं देने से पौधा चलता रहता है, तो वो फुटाव नहीं बढ़ते रहना देना चाहिए, किसान भाइयों से मेरा आग्रह है। तो जो कलम है ऊपर ऊपर का जो हिस्सा है वही पौधे को बढ़ाएं। कई बार हमने ऐसा भी देखा कि वो गलती से टूट जाता है और जो रूट स्टॉक होता है देसी पौधा होता है वो बढ़ जाता है। तो इस पे विशेष ध्यान रखें कि वो नीचे का जो फुटा हुआ वो निरंतर काटते रहना चाहिए, कुछ समय के बाद वो फुटाव अपने आप बंद हो जाता है। उसके बाद आपने पूछा कि भाई जो हमारे जो रासायनिक खादों के मुकाबले, देखो रासायनिक खादों से हमारा जो जो भूमि का स्तर है
1: जी
0: वो बिल्कुल खराब होता जा रहा है।
1: जी
0: तो किसान भाइयों से मेरा यहाँ भी निवेदन है कि प्रयास करें कि जो जो हमारे ऑर्गेनिक जिसको हम कहते हैं कार्बनिक जो खाद हैं
1: जी
0: वो उनका इस्तेमाल करें। इसमें जैसे नीम की खड़ी है, गोबर की खाद है, कंपोस्ट है,
1: जी
0: ठीक है जी। और बीच बीच में जैसे जैसे हमारा जो मई जून का महीना रहता है या खाली समय रहता है तो इसमें हरी खाद जैसे ढैंचा वगैरह है उसकी बिजाई करके वो भी हम जमीन में मिक्सअप कर सकते हैं। तो इन इन जो अकार्बनिक खाद हैं इनसे जो हमारी जो पौधे की जरूरत है खाद की वो भी पूर्ण होती है और जी उसका जो जमीन का स्तर है वो भी अच्छा रहता है, वो भी खराब नहीं होता।
1: जी डॉक्टर साहब, क्योंकि इसमें बात ये आव है कि जब भी हम खाद डालें हैं, खाद में एक तो पहले पास हमारे पास पशुधन की वजह से पुराना जो हमने कुरड़ी हुआ कर दी, 2 2.5 साल पुरानी जिसे नाम तैयार खाद बोला दे डॉक्टर साहब, आज वह पर्याप्त नहीं है। जो रासायनिक खादें आपने बताया सिंगल सुपर फास्फेट होगी, या फिर सबसे अच्छा तो ये हो रहा है कि अपने पास वर्मी कंपोस्ट जो
0: जी जी
1: केंचुए से
0: जी
1: निर्मित खाद
0: हाँ
1: होगा डॉक्टर
0: केचुए
1: साहब,
0: से
1: वो फिर छोटे बड़े पौधा में डॉक्टर साहब फर्क हो उसका, इसमें कितनी कितनी
0: बिल्कुल
1: मात्रा।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
0: ये भी एक वो है। जैसे हम बाग लगाते हैं तो शुरुआती दौर में मैंने बताया था कि गड्ढे को हम करीबन 30-40 के किले जैसे ऊपर की मिट्टी मैंने बताया था उसमें उतनी ही मात्रा में गोबर की खाद डाल के सिंगल सुपर फास्ट सिर्फ उनको जड़ों को रोपित करने में मदद करता है। बाकी इसके बाद जैसे हम वर्ष भर प्रतिदर मात्रा बढ़ाते रहते हैं, पहले वर्ष जैसे है, दूसरे वर्ष तीसरे है, तो 5 साल में पौधा पूर्णतः स्थापित हो जाता है। अमूमन 5 साल में जो जो हमारी देसी खाद जो रहती है 50 से 60 किलो के आसपास उसका आंकड़ा आ जाता है, जो कि शुरू में 20 किलो के आसपास हम सिफारिश करते हैं।
1: जी
0: तो 50 से 60 किलो, कुछ पौधों में वो 100 किलो है, जैसे आम का हमारा पौधा है,
1: जी
0: आम के पौधे में 7-8 साल में जब पूर्ण हो जाता है
1: बिल्कुल
0: तो 80 किलो, 70-80 के किलो, 10 साल में 100 किलो तक भी हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: आम है, अमरूद है,
1: जी
0: बेर है, बेर में जैसे हम 60-70 किलो की सिफारिश करते हैं 7-8 साल में, तो
1: जी
0: ये उम्र के हिसाब से ये मात्रा बढ़ती रहती है। और रासायनिक खाद भी और जो दूसरी हमारी कार्बनिक खाद है साल में हम करीबन 2 से 3 बार सिफारिश रहती है,
1: दो तीन बारी
0: दो
1: डॉक्टर
0: तीन
1: साहब,
0: बार रहती है।
1: इसका समय
0: हाँ
1: डॉक्टर
0: समय
1: साहब
0: जैसे हम अमूमन क्या है कि फरवरी का जैसे महीना है, जैसे
1: फरवरी
0: अमरूद
1: में।
0: है, आम है, नींबू जाती है,
1: जी
0: इसके बाद फिर हमारा जो अक्टूबर का महीना जैसे रहता है।
1: जी
0: समझने के लिए ये है कि पौधा जब विश्राम में होता है उस टाइम हम खाद पानी पूर्ण रूप से देते हैं ताकि स्वस्थ रह के उसमें अच्छे से फूल आए, फलन हो।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, और इसमें सही तरीका डॉक्टर साहब अपने किसान भाई कोई मिट्टी परीक्षण के आधार पर भी दे सके हैं
0: हाँ
1: कि
0: मिट्टी
1: भाई।
0: परीक्षण बहुत ज़रूरी है, जैसे शुरू में हमने बताया था, तो वो ये मदद करता है कि पहले से जो मौजूद है वो उनका क्या स्तर है, कि भाई नाइट्रोजन का क्या स्तर है,
1: जी
0: फास्फोरस का क्या है, ऑर्गेनिक जो कार्बन है हमारा उसका क्या स्तर है, उसके हिसाब से ही जो खाद पानी है वो उसकी सिफारिश की जाती है फिर आगे।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि इसमें ये देखा जा है कि
0: हाँ
1: हमारे पास 16 17 प्रकार के पोषक
0: हाँ
1: तत्व।
0: 17 प्रकार के पोषक तत्व तो रहते हैं टोटल ये,
1: जी
0: जिसमें से जैसे जो मुख्य है जैसे तीन शुरू के होते हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये हवा पानी से मिलते हैं,
1: जी डॉक्टर
0: ठीक
1: साहब
0: है जी।
1: जी
0: इसके बाद क्या है कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटासियम है, ये जैसे नाइट्रोजन है पौधे के बढ़वार में करता है, फास्फोरस है जो स्थापित करने में मदद करता है, पोटेशियम जो है पौधे को थोड़ा सा क्या है कि जो जो गुणवत्ता है उस
1: जी
0: पे जोर देता है।
1: जी
0: इसके बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फेट है, बाद में जो नौ तत्व हमारे बच जाते हैं, इनको मुख्य और फिर माइक्रो सूक्ष्म,
1: जी
0: तो सूक्ष्मों का ये है कि उनकी उनकी जो जो पौधे की जो दिनचर्या है वो भी माइक्रो, जैसे हमारा आयरन है, जिंक है, ये
1: जी
0: पौधे को पूर्ण रूप से जैसे फलन में, जड़ने में, इन चीज़ों में मदद करते हैं, बोरोन वगैरह है, तो दोनों का मिश्रण जो है
1: जी
0: वो अत्यंत आवश्यक है पौधे के लिए।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब,
0: हाँ, और माइक्रो जो मैंने

0: सूक्ष्म जो बताया है, इन पौधों को हम मुख्यतः पौधे को स्प्रे करके ही सिफारिश करते हैं।
1: जी
0: जैसे यहाँ पे एक मैं उदाहरण देता हूँ, जैसे बेर का एक उदाहरण देता हूँ, तो इसमें जिंक का एक स्प्रे है जैसे, तो नवंबर माह में उसकी जैसे सिफारिश रहती है, उदाहरण
1: नवंबर
0: के
1: में
0: तौर पे 15 दिन के अंतराल पर, जब हमारा बेर जो है कुछ मटर के दाने से थोड़ा सा बड़ा जो बड़ा हो जाता है मध्य नवंबर में, तो इसी तरह दूसरे जो सूक्ष्म जो हमारे खाद हैं उनको स्प्रे के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ जीवाणु खाद भी हैं
1: जी,
0: जो जो हैं,
1: जीवाणु
0: जैसे
1: खाद का तात्पर्य रक्षा फिर
0: जीवाणु खाद वो जीव ही होते हैं पौधों को, ये भी अकार्बनिक जैसे होते हैं, जैसे हमारा एजाइटोबैक्टर है,
1: फॉस्फेटिका
0: पीएसबी
1: वगैरह।
0: है,
1: जी
0: ऐसे करके वो वीएमए है, वाइकोमाइकोजा है जैसे, तो ये भी पौधे की जैसे ये जड़ में या बीज के साथ इनको उपयोग किया जाता है,
1: जी
0: और ये वातावरण में जो जैसे कुछ नाइट्रोजन वगैरह जो खाद होती है उसको पौधे को बढ़ाने में फिर ये ऐसी मदद करते
1: जी
0: हैं।
1: डॉक्टर साहब, फिर इसमें डॉक्टर साहब कुछ किसान भाई देखे कोई दीमक वगैरह की शिकायत हो जाए तो डॉक्टर साहब इसमें कोई अपनी जो रासायनिक तत्व वाली खाद दे हैं, या फिर हमने जैसे कोई किसान भाई अपना क्लोरो वगैरह छोड़ दे हैं, दीमक के लिए ठीक रहे डॉक्टर साहब
0: हाँ
1: ये?
0: हाँ कुछ कुछ क्षेत्रों में दीमक की बड़ी भारी समस्या आ जाती है, और इसमें सिफारिश ये रहती है कि भाई पौधे को जब हम पानी देते हैं, पानी के साथ ही हम खाद देते हैं। इसमें जो नीम की खड़ी है,
1: नीम की खड़ी,
0: नीम की खड़ी पौधे को जब हम स्थापित करते हैं, लगाते हैं बाग, उस टाइम भी हम जोड़कर डाल सकते हैं उसमें, और वो फिर बीच बीच में जैसे 3 वीक के 20 से 21 दिन के अंतराल पे जैसे हम बीच बीच में वो डालते रहें नीम की खड़ी, तो उसे दीमक का जो प्रकोप है वो कम होता है। रासायनिक खादों में जैसे जो इसमें हम कुछ सिफारिश करते हैं वो भी पानी के साथ ही उसको मिला जाता है,
1: जी
0: क्लोरोपाइरिफॉस जैसे आपने बताया।
1: जी डॉक्टर साहब, इसमें फिर बात आओ है सही तरीका का, क्योंकि जो अपना पुराना जो 5-7 साल का पेड़ बड़ा हो गया है तो उसकी एक अमूमन रवा है किसान भाई छतरी जड़ती जा रही है,
0: जी जी
1: जहाँ
0: जी
1: तक छतरी की छाया
0: हाँ
1: जा रही है, या फिर कोई छोटा पौधा। सही तरीका हमारे पास खुद दी करके कोई नड़ाई निराई गुड़ाई करके खाद किस प्रकार हम दे सकें पौधे ने?
0: देखो इसमें क्या रहता है, अब जैसे हम पौधा लगाते हैं, पौधा लगाने के बाद धीरे धीरे धीरे धीरे पौधे को एक आकार देते हैं। शुरू में उसको 1.25 मीटर के करीब, 80 सेंटीमीटर के करीब हम बिल्कुल सिंगल एक
1: जी
0: तना रखते हैं, और उसके बाद कोशिश करते हैं कि पौधा चारों तरफ बढ़े, चारों दिशाएं में एक एक टहनी उसकी प्रयास करते हैं।
1: जी
0: दो सीधे होती है ट्रेनिंग और प्रूनिंग, ट्रेनिंग का मतलब सीधा ही उसको आकार देना, और प्रूनिंग फिर पौधे की फलन के हिसाब से, हम सीजन के हिसाब से जैसे जो जो पतझड़ी पौधे हैं उनकी हम जनवरी के महीने में करते हैं दोबारा फुटाव आने से पहले,
1: जी
0: और कुछ कुछ पौधे जैसे जो गर्मी में पत्ते झाड़ते हैं जैसे बेर है, इसका मई में हम इसकी प्रूनिंग करते हैं। और पौधे को जैसे मैंने बताया था जो आराम की अवस्था होती है, जैसे हम खाद की जो है उस टाइम अच्छे से उसकी निराई गुड़ाई करके खाद और पानी दोनों ही एक साथ दे देते हैं फिर उसमें।
1: जी डॉक्टर साहब, इसमें पौधा तैयार हो जाए है, खाद पानी की तो किसान भाई अपना ध्यान रखे है, और शुरू में खाद डाल के अपने अगर उसमें खोदी निकालते हैं तो और ज़्यादा ठीक रहे डॉक्टर साहब इसमें?
0: देखो खाद के साथ साथ निराई गुड़ाई भी अत्यंत आवश्यक है।
1: जी, क्योंकि इसमें खरपतवार इतने आ
0: हाँ
1: जाते हैं।
0: हाँ खरपतवार जैसे बताया आपने, तो निराई गुड़ाई पौधे के लिए जरूरी है। थोड़ा सा क्या है कि जड़ों में ऑक्सीजन का जो स्तर है वो मिलने से पौधे की जो बढ़वार है वो होती है, और इसमें खरपतवार के लिए थोड़ा सा जो सिंचाई की हम बार बार बात कर रहे हैं, अगर पौधे की मल्चिंग करी जाए तो
1: जी
0: वो एक तो खरपतवार को बचाता है, और दूसरा नमी को भी कुछ समय तक बढ़ाए रखता है, वो
1: बरकरार रखे डॉक्टर
0: बरकरार
1: साहब।
0: रखता है। तो
1: जी
0: किसान भाई मतलब प्रयास करें पौधे जो है बाग अपना उसमें मल्चिंग मल्चिंग जरूर करें, और वो क्या है कि जो अपना जो घास फूस है उससे भी हो सकती है, पॉलीथीन से भी हो सकती है, कोई जैसे सरकंडों से भी हो सकती है, कोई कड़बी से भी हो सकती है, वो अपनी
1: जी
0: जरूरत के हिसाब से अपनी वो कर सकते हैं।
1: जी जी फिर डॉक्टर साहब इसमें एक मोटा तौर पर बात आओ है, एक तो हमारे पास नया पौधा है, एक हमारे पास पुराना बाग है, तो उसकी देख रेख में किसान भाई ध्यान कुछ तरह के रखे, क्योंकि नया पौधन थोड़ी ही आ गए, ठंड भी आओगी भाई, चौमासा भी आओ है, और एक प्रकार की स्थिति में संभाल रखनी पड़ेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी, देखो नया पौधा क्या होता है, जैसे घर में बच्चा होता है बच्चे पे पूरा परिवार नज़र रखता है कि कौन सा है, तो नए पौधे की

0: थोड़ी सी हमारे को एक सीजन, एक गर्मी सर्दी और एक जैसे बारिश का पूरा जो सीजन है ना, ज़्यादा देखभाल करनी होती है।
1: जी
0: तो पौधे को जैसे लगाने के बाद थोड़ा ध्यान रखें कटाई छटाई का, उसका को बड़ा करें। अगर हम इस सीजन में जैसे जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में लगा रहे हैं, तो वो जो सर्दी आएगी उस सर्दी में उनका जरूर ध्यान रखें, कोशिश करें कि ढकें उसको। एक एक हमारा एक स्पेल ऐसे आता है जिसमें करीबन 2-3 डिग्री 0 के आसपास तापमान आ जाता है, तो वो पौधा, छोटा पौधा नहीं झेल पाता, तो उसको ढक के ही बचाएं। और
1: बिल्कुल
0: ढकने का क्या है कि थोड़ा सा जो हमारा एक हिस्सा होता है दक्षिण और पूर्व में, थोड़ा सा उसको खाली छोड़े, 3 दिशाओं से उसको ढक दें,
1: जी
0: ताकि थोड़ा सा सूर्य की जो किरण है वो सुबह सुबह उसको मिले। ऐसे ही फिर आगे जाके मई जून में हम जो जैसे अब लगाए हैं, तो मई जून में भी गर्मी से बचाने के लिए पौधों को थोड़ा सा ढकने का प्रयास करें, ताकि एक सर्दी और एक गर्मी उसकी अच्छे से निकल
1: हाँ,
0: जाए।
1: क्योंकि गर्मी के टाइम में तो लू का
0: हाँ,
1: और फिर सर्दी के टाइम में पाले से
0: पाड़े
1: बचाव
0: से
1: कर।
0: दोनों से बचाने की जरूरत है।
1: जी
0: एक सीजन के बाद पौधा फिर चल पड़ता है।
1: जी डॉक्टर साहब,
0: हाँ
1: फिर इसमें आखिरी में बात आओ है, जब अपना अगर किसी किसान भाई का खेत ऐसा हो, स्थिति उसकी ऊंची नीची ज़्यादा जल भराव की, तो पानी निकासी का प्रबंध डॉक्टर साहब इसमें होना बहुत ज़रूरी है।
0: हाँ पानी
1: जी
0: निकासी का प्रबंध बहुत ज़रूरी है। पौधे की जड़ों में अगर पानी खड़ा रहेगा तो पौधा उसका जो है नहीं उसको झेल पाएगा। तो कोई अगर ऐसा खेत है जिसमें पानी भरता है, तो उसमें मेरा सुझाव ये है कि जो पौधे का जो थावड़ा है वो इस ढंग से बनाएं कि कम से कम सबसे पहले उस थावड़े में ना टिके और पौधों के बीच में पानी रह जाए, तो उसको ऐसी शेप दें, थोड़ा सा उसकी ढलान ऐसे करें कि जड़ों में पानी ना इकट्ठा करें।
1: जी
0: और जहाँ पे ये समस्या है वहाँ पे पौधों को पहले से ही मिट्टी लगा के रखें तने के, ताकि
1: जी
0: वो जो जल भराव है वो पौधे को डायरेक्ट टच ना करे तने को, साइड में पानी रहे।
1: जी
0: तो ये
1: जी
0: विशेष ध्यान रखे, जैसे जैसे पपीते का जो पौधा है
1: जी
0: वो पानी के अगर संपर्क में उसका तना सीधे तौर पे आ जाएगा तो वो बिल्कुल नहीं झेल पाता, दूसरे पौधे भी ऐसे नहीं है। तो मिट्टी से उसको ढक के रखें और तुरंत प्रभाव से पानी की निकासी करें।
1: जी इस मौसम में तो खास तौर पे मिट्टी हमसे डालें तो सबसे बढ़िया रहेगा
0: बिल्कुल
1: डॉक्टर साहब।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर साहब, इसमें कोई और ऐसी बात रहेगी हो जो किसान भाई के लिए और लाभप्रद हो सके है?
0: इसमें किसान भाइयों से मेरा यही बार बार निवेदन है कि ये सीजन जो है अभी हमारे पास समय है, तो जो भी इच्छुक किसान भाई हैं बाग इसी जगह से, सरकारी नर्सरी से, पंजीकृत नर्सरी से उत्तम क्वालिटी के उत्तम किस्में जो पौधों की हैं वो जरूर बाग लगाएं।
1: डॉक्टर साहब, फिर इसमें कोई किसान भाई हॉर्टिकल्चर विभाग में भी संपर्क कर सके
0: हाँ,
1: है?
0: और हॉर्टिकल्चर विभाग जैसे कुछ जो सब्सिडी वगैरह हैं
1: जी
0: तो जो हरियाणा सरकार का जो विभाग है वहाँ देते हैं, और जैसे मैं हमारा जो विश्वविद्यालय है, बागवानी विश्वविद्यालय है या जो दूसरा कृषि विश्वविद्यालय है, तकनीकी रूप से कोई भी जानकारी किसी भी तरह की, तो वो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, तो जो भी किसान भाई अपने बाग लगाने के इच्छुक हैं, बशर्ते तो डॉक्टर साहब इसमें कोई थोड़ी बड़ी पूर्व प्रसारित कोई जानकारी, कोई ट्रेनिंग वगैरह का थोड़ा मोड़ा हिस्सा अगर किसान भाई की समझदारी के में सम्मिलित हो जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा डॉक्टर साहब।
0: हाँ जी, प्रशिक्षण जो है, प्रशिक्षण बागवानी जो हमारा उद्यानिक विश्वविद्यालय है, जैसे जैसे मशरूम से संबंधित हमारा एक सेंटर है मूरथल में,
1: जी
0: तो वहाँ पे ट्रेनिंग लगभग पूरा साल हम मशरूम की देते रहते हैं। इसके सिवाय जो और जो है इसकी जो नर्सरी से संबंधित है, बाग लगाने से संबंधित है, ये ट्रेनिंग हम करनाल में देते रहते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब,
0: तो संपर्क कर सकते हैं वहाँ पे किसान भाई जो भी इच्छुक लोग हैं।
1: तो जो भी किसान भाई बशर्ते कोई करनाल में ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहो, या फिर जो भी अपने कोई हमने बाग लगाना है, या फिर उसकी जो भी डॉक्टर साहब ने बताया खाद पानी का प्रबंधन ठीक रख के चलें, तो ये इसमें ठीक पैदावार किसान भाई ले पाओगा। तो पूरी जानकारी देने के लिए डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सुनी भैया ने बातचीत बागों में खाद पानी प्रबंध के बारे में, और काफ़ी समय हो गया है तो भैया नरागनी सुनवाओगे रणबीर सिंह बड़ुआ सनिया और साथियों की गाई हुई।

आई खटका नगरी, अरे खटका नगरी, मैं कई दिन

का सांबार पलटन फोड़े रसालिये चाहिए नहीं काम दे नाम महारे

भाई पीर के दुख में रोया था, पीर के दुख में रोया था। एक था सुगरीब

0: ये तो सुनी भयान है रागनी रणबीर सिंह बड़ोवासनी और साथियों की गाई हुई। और भाइयों ईब ये देखे हैं कि जो भी अपना टाइम चाह रहा है तो वही खेती बाड़ी का ध्यान रखें, थोड़ी सूझबूझ के साथ खेती करें, कम खर्चे करें, जब जाके शुद्ध मुनाफा किसान भाई ने मिल पाओगा। और ईब देख लें भाइयों गुड़ी खानी, इसी के साथ अपना कृषि जगत कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है। भाई सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण संसार।
1: पेश है किसानों के लिए दुनिया का पहला तरल नैनो यूरिया इफको नैनो यूरिया। अब खेती की लागत कम, आधा लीटर बोतल में एक बोरी यूरिया का दम।
0: आकाशवाणी का यूरोत केंद्र है और ये भाइयों आज शनिवार का दिन है और प्रस्तुत है पर कार्यक्रम आपकी पसंद और इसकी शुरुआत करेंगे बाबूराम दैया और साथियों की गाई हुई रागनी के साथ। और इसमें फरमाइश करता है आदर्श गांव बलियाली हरियाणा से दर्शन लाल बंसल, सुदेश रानी बंसल, प्रवीण कुमार बंसल, ममता रानी, कमल कुमार बंसल। इसी रागनी ने पसंद करने वाले हैं दतरेंगी से भागवत मर्मा और गुलाब द्वार्स। अगले श्रोता हमारे दादरी गेट भिवाणी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल और कुणाल मेहरा। तो सुने भाई अपनी पसंद की ये रागनी।

ये तो रागनी सुनी भयान है बाबूराम दैया और साथियों की गाई हुई। अगली रागनी भयान सुनवाऊंगे बाली शर्मा और साथियों की गाई हुई रागनी। पसंद करने वाले श्रोता इस मरोंगे फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल ते गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू और जी एस रामगढ़िया। अगले श्रोता हमारे रहोंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स महेंद्रगढ़ ते विकास गांधी, ममता गांधी, वंश गांधी और दिया गांधी, नोनू, शगुन, विक्की और गांधी परिवार का सभी सदस्य। इसी रागनी ने पसंद करें हैं भाई कृष्ण पार्क से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सीटी दीवाना। तो सुनो भाई अपनी पसंद की ये रागनी।

ਆਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੈ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਜੀ ਦਰਖਾਸ ਜੈਨੀ ਨੇ।

0: करने वाले श्रोता इसमें होंगे वही गांव खारिया डाणी जिला सिरसा हरियाणा से ओम प्रकाश बिजरानिया, देवेंद्र बिजरानिया, सतबीर राजपाल, अभिषेक और योगेश बिजरानिया, पूजा अंजू, विक्की चाहर और इसी रागनी ने पसंद करे हैं भाइयों हरिपुरा झज्जर से प्रदीप वधवा, आशा वधवा, गीतेश वधवा, मोक्ष यश और निखिल वधवा और खनन वधवा। अगले श्रोता हमारे रवेंगे भाइयों गांव फरासी से राजकुमार डूडी, सरजीत सिंह डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। इसी रागनी ने पसंद करे हैं DLF कॉलोनी रोहतक के महेंद्र शाह, हरिंदर शाह, जतिंदर शाह और श्रीमती उर्वशी शाह, ज्योति बत्रा और वंशिका और इमानसु बत्रा। अगले श्रोता हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, बेबी काव्या और दीपिका मल्होत्रा, अंशु मल्होत्रा और लुधियाना से हैं रमन अग्रवाल। तो सुनो भाई अपनी पसंद की ये रागनी।
1: हो भगवान श्री कृष्ण सुदामा की कोड़ी भर लेते हैं और उसका हाल चाल पूछते हैं बाप के द्वारा कैसे

0: अगली रागनी भयन सुनवाओगे धर्मेंद्र कतलुपुरिया और साथियों की गाई हुई। पसंद करने वाले श्रोता स्मरोंगे डाबर कॉलोनी भिवानी से रमेश शिवानीवाल, सौरभ शिवानीवाल और रमेश वर्मा, पट्टी मेयर बड़ोत से रामानंद कश्यप, विमलेश कश्यप, पाले राम, भगत अंगूरी देवी, सचिन, ज्योति, आयुष और आर एन कश्यप। करमपुरा नई दिल्ली से हैं अनिल मदान, कविता मदान, सौरभ मदान और मानसी मदान, वैन्या मदान, निमिष मदान। तो सुने भाई अपनी पसंद की ये रागनी।
1: दादा लक्ष्मीचंद ने बताया कि भगवान के भजन के बगैर जीवन ऐसे ही चले जाता है, और एक भजन के माध्यम से कैसे क्या बताया।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। सुनिए सूचनाएं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में। थाना लाइन पर बहादुरगढ़ सूचित करता है कि सचिन सुपुत्र अतर सिंह, जो कि दिनांक 7 जुलाई 2026 से लाइन पर बहादुरगढ़ से लापता है। सचिन का हुलिया आपको बता दें, उम्र 26 वर्ष, कद 5 फुट 9 इंच, रंग सांवला व स्वस्थ शरीर है। सचिन के बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं थाना लाइन पर बहादुरगढ़ से। थाना शिवाजी कॉलोनी रोहतक सूचित करता है कि रामलता वाइफ ऑफ दिनेश, जो कि अपने 3 बच्चों खुशी, पलक और रौनक के साथ दिनांक 16 जुलाई 2026 से लापता है। रामलता का हुलिया आपको बता दें, उम्र 36 वर्ष, कद 5 फुट 4 इंच, रंग गेहुआ, लंबूतरा चेहरा व पतला शरीर है। बड़ी बेटी खुशी का हुलिया कुछ इस तरह से है, उम्र 15 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, रंग गेहुआ, पतला शरीर है। पलक का हुलिया आपको बता दें, उम्र 14 वर्ष, कद 5 फुट 5 इंच, रंग गेहुआ व स्वस्थ शरीर है। रौनक का हुलिया कुछ इस तरह से है,

उम्र 12 वर्ष, कद 4 फुट 6 इंच, रंग गेहुआ, लंबूतरा चेहरा व पतला शरीर है। इन सब के लिए कोई भी जानकारी देने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं थाना शिवाजी कॉलोनी रोहतक से। थाना सदर रोहतक सूचित करता है कि वासुदेव सुपुत्र यशवीर, जो कि गांव मकड़ोली कला रोहतक का रहने वाला है, दिनांक 17 जुलाई 2026 से लापता है। वासुदेव का हुलिया आपको बता दें, उम्र 30 वर्ष, कद 5 फुट 9 इंच, रंग सांवला, गोल चेहरा व स्वस्थ शरीर है। इनके बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं थाना सदर ज़िला रोहतक से। थाना शिवाजी कॉलोनी रोहतक सूचित करता है कि एक अज्ञात पुरुष की लाश, जो कि दिनांक 17 जुलाई 2026 को झज्जर रोड नज़दीक तारा होटल के पास मिली है, जिसे शिनाख्त हेतु पोस्टमार्टम करवाकर PGIMS रोहतक डेड हाउस में रखा गया है। इस अज्ञात पुरुष के शव का हुलिया आपको बता दें, उम्र करीब 35 से 40 वर्ष, कद 5 फुट 3 इंच, रंग सांवला, लंबूतरा चेहरा है, गले में काले रंग का डोरा पहना है, छाती पर अंग्रेजी से सुरमे से GP गुदा है, दाहिने बाजू पर महादेव व ओम गुदा हुआ है, बाएं हाथ पर प्रमिला व बलि गुदा है और दाहिने हाथ की कलाई पर ओम है। इसके बारे में कोई भी जानकारी देने व लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं थाना शिवाजी कॉलोनी रोहतक से। सूचनाएं समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में घर फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, धुन तैयार की है आर डी बर्मन ने।

0: घर फिल्म से आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में ये गीत। गुलजार की बोल थी, आरडी बर्मन का संगीत था।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: गुलजार का लिखा और खयाम का संगीत बद किया गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। एक बार फिर से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

0: थोड़ी सी बेवफाई, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में सुना। गुलजार की बोल थी, खयाम का संगीत था। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। मीडियम वेव पर हमारी फ्रिक्वेंसी है 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: कार्यक्रम फिल्म संगीत में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, स्वीकार किया मैंने फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। नीरा फाजली की बोल हैं, उषा खन्ना का संगीत है।

0: स्वीकार किया मैंने। ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। नीरव हाजली के बोल थे, उषा खन्ना का संगीत था।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: बाजार फिल्म से आपने सुना लता मंगेशकर और तलत अज़ीज़ की आवाज़ों में ये गीत। गीत के बोल लिखे थे मखदूम मोहिउद्दीन ने और संगीत दिया था इस गीत को खयाम ने। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में अगला गीत इस अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में धनवान फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, संगीत से सवारा है इस गीत को पंडित हृदयनाथ मंगेशकर ने।

धनवान फिल्म से आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में ये गीत। गीत के बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। संगीत से सवारा था इस गीत को हृदयनाथ मंगेशकर ने।

0: EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: कार्यक्रम में अगला गीत आइए सुनवाते हैं आपको लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में काला पत्थर फिल्म से। गीतकार हैं साहिल लुधियानवी, संगीतकार हैं राजेश रोशन।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आपने सुना रॉकी फिल्म से ये गीत। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीत से संवारा था इस गीत को आर डी बर्मन ने। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र

इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। मीडियम वेव पर हमारी फ्रिक्वेंसी है 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। साथ ही आपने ट्यून किया है न्यूज़ ऑन AIR और DTH। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में अनजाना फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

अनजाना फिल्म से आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में ये गीत। आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। कार्यक्रम के अंत में सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ठोकर फिल्म से गीत। साजन दहलवी के बोल हैं, संगीतकार हैं श्याम जी घनश्याम जी।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आपको सुनवाने जा रहे हैं हुकुम चंद की गाई गजलें। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति इनकी आवाज़ में, ये गज़ल।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं हुकुमचंद की गाई गजलें।

0: इसी प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आपने हुकुम चंद की गाई गजलें सुनी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और ठीक 9 बजे होंगे अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ हुर्मुज जलडम्बर मध्य पर ईरान और अमेरिका का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा की गई। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
2: लेकिन आप चाहे मुझे

0: श्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।
1: राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नमिदास और रूपश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर और वैकुम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा काडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। बल्कि 2898 एडी को भरपूर मनोरंजन वाली सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। कैप्टन मिलर को राष्ट्रीय और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। श्रीकांत को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म, मारन को सर्वश्रेष्ठ गुजराती फिल्म, लहरी को सर्वश्रेष्ठ उड़िया फिल्म, मिथ्या को सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ फिल्म, सुनीता को सर्वश्रेष्ठ मणिपुरी फिल्म और ढोली को सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दी गई है। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में पटाखा कारखाने में भीषण आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह कारखाना रामोल गात्राड रोड पर है।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वसराल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वालों के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत का ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। यह प्रक्षेपण आज दोपहर 12:05 पर हुआ। इस रॉकेट का निर्माण हैदराबाद की निजी कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। एक रिपोर्ट।
3: भारत ने निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा अंतरिक्ष में पेलोड स्थापित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है। भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। विक्रम 1 भारत का पहला निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। इसे हैदराबाद स्थित एयरोस्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस द्वारा डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। आगमन मिशन के अंतर्गत विकसित ये रॉकेट छोटे उपग्रहों के लिए किफायती प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर बनाए गए विक्रम 1 में 3 ठोस प्रणोदक चरण और 1 तरल ईंधन वाला रमन इंजन लगाया गया है। ये अंतरिक्ष की सबसे निचली कक्षा में

0: पेलोड स्थापित करने में सक्षम है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने विक्रम 1 से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है।
2: आज देश में पहली बार एक निजी रॉकेट ने सफलतापूर्वक एक सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है और इससे युवाओं में आर्थिक विकास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना बढ़ती है। वास्तव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है।
3: इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य पर संघर्ष बढ़ने के कारण अमेरिका और ईरान ने आज हमले तेज कर दिए। कुवैत में हमलों से भारी तबाही होने की खबर है। वहां ईरान ने वाटर डिसेलिनेशन संयंत्र और एक तेल सुविधा केंद्र पर हमले किए। इन हमलों में कई लोग घायल हुए और बिजली उत्पत्ति बाधित हुई है। पिछले दो दिन में डिसेलिनेशन संयंत्र पर यह दूसरा हमला था। पेयजल के लगभग 90% हिस्से का डिसेलिनेशन के जरिए आने के कारण देश में चिंताएं बढ़ गई है। कुवैत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी हमलों में महत्वपूर्ण नागरिक अवसंरचना को निशाना बनाए जाने की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। रूस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों में 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 60 घायल हुए हैं। रूस के अधिकारियों ने बताया कि रूस के प्रमुख ऑनलाइन रिटेलर के 2 विशाल गोदामों पर यूक्रेन ने रात को ड्रोन हमले किए। एक गोदाम रूस के तांबो ओब्लास्ट क्षेत्र में और दूसरा मॉस्को में है। ओब्लास्ट क्षेत्र के कोटोवस्क में रात्रि पाली में काम करने वाले 7 श्रमिकों की मृत्यु हो गई और 25 घायल हो गए। वहीं मॉस्को के इलेक्ट्रोस्टल शहर में एक व्यक्ति मारा गया और 36 घायल हुए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा की पत्नी चिनम्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चिनम्मा अपनी विनम्रता और समाज सेवा के प्रति अटूट समर्पण के लिए जनप्रिय थीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं श्री देवेगौड़ा और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चिनम्मा शांत स्वभाव, गरिमा और परिवार के प्रति अटूट समर्पण की प्रतीक थीं। वे श्री देवेगौड़ा जी के लंबे सार्वजनिक सेवा काल में एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ी रहीं। श्री देवेगौड़ा HD कुमारस्वामी और पूरे शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने कामना की कि ईश्वर उन्हें इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई रामनगर देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी को वर्चुअल माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। रेल मंत्री ने कहा कि ये रेलगाड़ी सप्ताह में 2 दिन संचालित होगी और उत्तराखंड के कुमाऊं तथा गढ़वाल क्षेत्रों के बीच बेहतर रेल संपर्क उपलब्ध कराएगी। श्री वैष्णव ने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तरी रेलवे ने जम्मू डिवीजन के कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम तत्काल प्रभाव से बदलकर शहीद कप्तान सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है। स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा, जबकि अन्य सभी विवरण अपरिवर्तित रहेंगे। अनारक्षित टिकट प्रणाली और यात्री आरक्षण प्रणाली में स्टेशन MC सुनील कठुआ के रूप में दिखाई देगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस निर्णय की घोषणा की और कठुआ के लोगों को बधाई देते हुए इस कदम को शहीद के बलिदान और राष्ट्र के प्रति सेवा को श्रद्धांजलि बताया। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वज वाहक चुना गया है। दोनों दिग्गज एथलीट 23 जुलाई को उद्घाटन समारोह में 126 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व करते हुए तिरंगा लेकर मार्च करेंगी। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT ऊषा ने आज इसकी आधिकारिक घोषणा की। मीराबाई चानू लगभग एक दशक से भारत की अग्रणी भारोत्तोलक रही हैं। उन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता और उसके बाद 2022 के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य और 2023 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के

0: ऑफ मैच में आज फ्रांस का सामना इंग्लैंड से होगा। यह मैच देर रात 2:30 बजे अमेरिका के मियामी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अर्जेंटीना और स्पेन कल रात न्यूजर्सी स्टेडियम में विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगे। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज सिंधु ने चीन की चेन यू फी को पहले गेम में हराया। दूसरे गेम में चेन यू फी की चोट के कारण सिंधु को वॉकओवर मिला। प्रतियोगिता के फाइनल में कल सिंधु का सामना जापान की अकाने यामागुची से होगा। प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने के साथ ही पीवी सिंधु विश्व की 9वें नंबर की खिलाड़ी बन गई हैं। 31 वर्षीय सिंधु ने वर्ष 2026 की शुरुआत विश्व रैंकिंग में 18वें स्थान से की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र अड़ापा विजय अनुष्ठान आज शाम पुरी के श्री गुंडिचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। यह वार्षिक रथ यात्रा के सबसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण समारोहों में से एक है। रथ यात्रा के सफल समापन के बाद कल पवित्र त्रिमूर्ति को वैदिक मंत्रों, भक्ति गीतों और सदियों पुराने मंदिर अनुष्ठानों के बीच पारंपरिक पहंडे जुलूस में उनके संबंधित रथों से श्री गुंडिचा मंदिर के गर्भगृह में ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिलेगा। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के शामिल होने के बाद नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया को लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में अलग बैठने की अनुमति दी। अहमदाबाद में पटाखों के कारखाने में भीषण आग में 5 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। प्रमुख बुनियादी ढांचों और सैन्य ठिकानों पर हमलों के साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर अमेरिका और ईरान का युद्ध तेज हुआ। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। और फीफा विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए आज रात मियामी स्टेडियम में फ्रांस का सामना इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. द हेडलाइंस, 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस्ड। Yami Gautam wins Best Actress Award for Article 370, Mammootty for Brahmayugam and Kartik Aaryan for Chandur Champion share Best Actor Award. 20 rebel TMC MPs who joined National Citizens Party of India get Lok Sabha Speaker's approval for separate seating in the House. Massive fire at a firecracker factory in Ahmedabad claims 5 lives. Prime Minister Narendra Modi expresses grief. US-Iran fighting over Strait of Hormuz escalates with attacks on key infrastructure and military targets. Olympic medalists Mirabai Chanu and Lovlina Borgohain to be India's flag and baton bearers at opening ceremony of Commonwealth Games in Glasgow. And in FIFA World Cup, France to clash with England for third place at Miami Stadium tonight. Hindi film Article 370 has won the Best Film Award in the 72nd National Film Awards. Announcing the awards today in New Delhi this evening, Chairman of Jury Feature Film Jairaj said Mammootty and Kartik Aaryan have won the National Film Awards in Best Actor category for their movies Brahmayugam and Chandur Champion. He said Yami Gautam will be given the Best Actress Award for her performance in the film Article 370.
2: Best actress in leading role, Article 370, Hindi film. Renowned performance that portrays a law enforcement agent's unwavering

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म से। इसमें आज आपको सुनवा रहे हैं लव इन टोक्यो फिल्म से चुनिंदा गीत। कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

जिंदगी की महफिल, महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे।

के तूफान कैसे छुपाऊं, आंखें क्या क्या देख रही है, दिल पे जो गुजरे कैसे बताऊं। आजा रे आज।

लता मंगेशकर की गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक फिल्म से यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से, इसमें आज आपने लव इन टोक्यो फिल्म से चुनिंदा गीत सुने। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में
1: पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा की ही यारा में उठत हिलो।
0: स्मृति शेष में नमन फिल्म जगत की कुछ ऐसी हस्तियों को जो इस बीच हमसे बिछड़ गईं। जानी मानी अभिनेत्री और निर्देशक विजया मेहता।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, सवाल उठाना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
0: जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी। जाने माने फिल्मकार, अभिनेता, गायक और संगीतकार के भाग्यराज।
3: संगत जंगल मिन्नुं पैंगिल ताने कुंजे अदो इने तंजम मल्लेगै मंजम एन्रे वन तोलिल तुंजे अदो।
0: और जाने माने फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखक और अभिनेता भारती राजा।

सबसे पहले संपादकीय प्रेमचंद की कहानियों पर बनी फिल्में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष हैं। 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ था। जुलाई का महीना प्रेमचंद की याद का महीना होता है, इसलिए संपादकीय में आज हम चर्चा कर रहे हैं उन फिल्मों की जो प्रेमचंद की कृतियों पर आधारित हैं। प्रेमचंद का लेखन भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की पीड़ा और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का बाकायदा यथार्थवादी चित्रण करता है। आज भी प्रेमचंद उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं। शायद यही वजह है कि विभिन्न भाषाओं के फिल्मकार अपनी फिल्मों के लिए प्रेमचंद की

अजंता सिनेटोन में लेखक के रूप में काम करने लगे। यहां उन्होंने दो फिल्में लिखी, मिल मजदूर और नवजीवन। अपने समय के विख्यात फिल्मकार नानूभाई वकील ने 1934 में उनके प्रख्यात उपन्यास सेवा सदन पर इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी जो प्रेमचंद को पसंद नहीं आई थी। उन्हें फिल्म जगत का काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने अपना अनुबंध तक पूरा नहीं किया और साल भर के अंदर ही बनारस लौट गए। मशहूर तमिल फिल्मकार कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने सन 1938 में सेवा सदन पर तमिल भाषा में इसी नाम की एक फिल्म बनाई थी। हिंदी फिल्म के उलट तमिल फिल्म मूल कृति के प्रति ज्यादा ईमानदार थी। इस फिल्म में प्रसिद्ध गायिका एमएस सुब्बलक्ष्मी ने नायिका सुमन की भूमिका निभाई थी। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर इसी नाम की फिल्म बनी सन 1941 में। मुंशी प्रेमचंद भले ही वापस लौट गए हों, लेकिन मुंबई में उनकी कृतियों पर फिल्में बनने का सिलसिला जारी रहा। सन 1959 में प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा पर कृष्ण चोपड़ा ने एक फिल्म बनाई, हीरा मोती। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा राय मुख्य भूमिकाओं में

मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति गोदान सन 1936 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास पर सन 1963 में इसी नाम की फिल्म आई, जिसे त्रिलोक जेटली ने निर्देशित किया था। इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं थीं राजकुमार, कामिनी कौशल, शशिकला और महमूद की। इस फिल्म के गाने अनजान ने लिखे और संगीत दिया जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने।

0: बांग्ला के महानतम फिल्मकारों में गिने जाते हैं सत्यजीत रे. उन्होंने पूरे करियर में सिर्फ दो हिंदी फिल्में बनाई और संयोग देखिए कि दोनों ही फिल्में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित थीं. सन 1977 में सत्यजीत रे ने बनाई शतरंज के खिलाड़ी. ये सत्यजीत रे की पहली हिंदी फिल्म थी जो प्रेमचंद की इसी नाम की कहानी पर आधारित थी. इसमें अवध के दो कुलीन मित्रों मीर और मिर्जा की कहानी है जो शतरंज में इतने डूबे रहते हैं कि अंग्रेजों के हाथों अपने राज्य के पतन की परवाह तक नहीं करते. मुख्य कलाकार थे संजीव कुमार, सईद जाफरी, अमजद खान और शबाना आजमी वगैरह.
1: प्यादे तो ठीक है
2: जी,
1: तो वजीर और बादशाह भी ठीक है, लेकिन ये पीले घोड़े और रुख में गड़बड़ ना कीजिएगा.
2: तो सुन लीजिए ना, पीला टमाटर, नींबू घोड़ा, मिर्ची रुख.
0: सत्यजीत रे की दूसरी हिंदी फिल्म थी प्रेमचंद की कहानी सतगति पर आधारित इसी नाम की फिल्म. इस फिल्म में ओमपुरी, स्मिता पाटिल और मोहन अगाशे ने अभिनय किया था.
3: बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, आप दया करके चले चलते और इसका साइड सगन बिचार दे.
4: क्या खड़ा हो गया यहाँ?
5: मैं यहाँ खाली बैठा हूँ कि जब जो जहाँ बुलाए उसी दम चल पड़ो.
0: ये कहानी जातिगत शोषण की एक क्रूर और मार्मिक कथा है. बांग्ला के दिग्गज निर्देशक मृणाल सेन ने प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन को आधार बनाकर 1977 में तेलुगु की एक फिल्म बनाई ओका उरी कथा. इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था. छोटे पर्दे पर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां खूब लोकप्रिय हुई. दूरदर्शन के सुनहरे दिनों में उनके उपन्यास पर आधारित एक धारावाहिक आया निर्मला, जिसे बहुत पसंद किया गया. इसके अलावा गुलजार ने दूरदर्शन पर प्रेमचंद की चुनिंदा कहानियों को लेकर एक धारावाहिक बनाया तहरीर मुंशी प्रेमचंद की. ये सीरियल भी काफी चर्चित रहा. इसके तहत पूस की रात, ईदगाह, ठाकुर का कुआं और नमक का दरोगा जैसी कई कहानियों को छोटे पर्दे पर शिद्दत से पेश किया गया था. भले ही प्रेमचंद को जीते जी बंबई की फिल्मी दुनिया रास नहीं आई, पर कमाल की बात यह है कि उनके जाने के बाद सत्यजीत रे और मृणाल सेन जैसे कालजयी फिल्मकारों ने उनकी कहानियों को वो सम्मान और गहराई दी जिसकी वे हकदार थी. मुंशी प्रेमचंद की स्मृति को हमारा नमन. ये था संपादकीय मुंशी प्रेमचंद की कृतियों पर बनी फिल्में. और अब स्मृति शेष. स्मृति शेष. स्मृति शेष में आज हम चार हस्तियों को नमन करने जा रहे हैं जो हमसे बीते दिनों बिछड़ गईं. सबसे पहले नमन करते हैं जानी मानी अभिनेत्री और फिल्मकार विजया मेहता को, जिन्होंने 30 जून को इस असार संसार से विदा ली. बरसों पहले की बात है, तकरीबन 90 का दशक. दूरदर्शन पर एक सीरीज आती थी लाइफलाइन. अस्पतालों के जीवन, डॉक्टरों और इंटर्न्स के जूझने और मरीजों से जुड़े अनुभवों पर केंद्रित था ये धारावाहिक. इसकी निर्देशक थीं विजया मेहता. एक से बढ़कर एक कलाकार थे इस सीरीज में. तन्वी आजमी, के रैना, मोहन जोशी, शफी नामदार, इला अरुण, पंकज कपूर, ए के हंगल जैसी नामी हस्तियों का जुड़ाव था इस धारावाहिक से. विजया मेहता की पहचान सिर्फ लाइफलाइन टीवी सीरियल नहीं है, उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को कुछ कालजयी और बेहद कलात्मक फिल्में दी हैं. पेस्टन जी, राव साहब और हमीदाबाई की कोठी वगैरह. उन्होंने रुपहले पर्दे पर कई बार अभिनय किया, खासतौर पर श्याम बेनेगल की फिल्म कलयुग में, गोविंद नेहलानी की फिल्म पार्टी में दमयंती राणे की उनकी भूमिका सबको याद है. उनकी निर्देशित फिल्म राव साहेब सन 1985 में आई थी और जयवंत दलवी के मराठी उपन्यास पर आधारित थी. इसी उपन्यास पर जयवंत दलवी ने बैरिस्टर नाम का एक नाटक भी रचा था. इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे. विजया मेहता को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और इसी फिल्म के लिए श्याम भूतकर को मिला सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार. सन 1988 में विजया मेहता ने

0: पिस्टन जी नामक फिल्म बनाई। असल में ये फिल्म मुंबई में 50 और 60 के दशक में मौजूद पारसी समुदाय की कहानी है।
1: तूने जरू की सूरत देखी है, उसकी आवाज सुनी है? 5 वर्ष ने अंदर जरू की क्या हालत बना दी तूने। बच्चा मर गया, पप्पा स्ट्रोक थी बीमार, रानी तू सुख नहीं बात करे। उस औरत ने तेरे को इतना सेल्फिश बना दिया है, पन खुदा सब देखता है, याद रख जे।
0: इस फिल्म को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम का राष्ट्रीय पुरस्कार।
2: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी,
0: जाने माने फिल्मकार और अभिनेता अमोल पालेकर,
2: इसे दिग्गज कहना भी कम होगा। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया, अलग किस्म के सब्जेक्ट्स ले आना, अलग किस्म के सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया। मैं इतना ही कहूंगा कि विजया जी मेरी सीनियर थी, क्योंकि मैं सत्यदेव दुबे ग्रुप से था, उसको राइवल ग्रुप माना जाता था। मेरी और विजया जी की एक बड़ी प्यारी सी दोस्ती थी, एक बहुत अच्छा गहरा रिश्ता था।
0: विजया मेहता को हमारा विनम्र नमन। जाने माने फिल्म निर्माता पहलाज नेहलानी का 4 जून को निधन।
3: दिसंबर 1948 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। विभाजन के बाद परिवार सब कुछ छोड़कर आ गया। पहलाज नेहलानी का बचपन मुंबई के कोलाबा में बीता। घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए पहलाज नेहलानी ने पढ़ाई छोड़ दी और छोटे मोटे काम पकड़ लिए। फिल्मों से बचपन से उन्हें लगाव रहा था। वे कोलाबा की टॉकीजों के बाहर घंटों खड़े रहते। जेब खर्च के लिए वो कभी कभी फिल्मों के टिकट ब्लैक किया करते थे। इसी रास्ते उनकी मुलाकात सिनेमा जगत के कुछ लोगों से हुई और वे फिल्म संसार में बतौर क्लैपर बॉय शामिल हो गए। यहां उन्हें समझ में आया कि अगर अच्छी जिंदगी बितानी है तो फिल्मों से जुड़ा कोई बिजनेस करना होगा। धीरे धीरे पैसे जमा करके उन्होंने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया। वे छोटी फिल्मों के राइट्स खरीदते और उन्हें छोटे थिएटर्स में लगवाते। कुछ ही सालों में पहलाज नेहलानी बंबई और गुजरात सर्किट के एक बड़े वितरक बन गए। सन 1982 में उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी शुरू की, चिराग दीप इंटरनेशनल। उनकी पहली फिल्म थी हथकड़ी, साल 1982। कड़ी कामयाब रही और पहलाज नेहलानी फिल्म जगत के दिग्गज प्रोड्यूसर्स में शामिल हो गए। सन 1985 के आसपास उन्होंने विरार के एक दुबले पतले लड़के को देखा जो कमाल का डांस करता था। उसका नाम था गोविंदा आहूजा। पहलाज नेहलानी ने इस नौजवान को लेकर 1986 में बनाई फिल्म इल्जाम। इस फिल्म ने गोविंदा को सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की, 1992 शोला और शबनम, 1993 आंखें। पहलाज नेहलानी की प्रमुख फिल्में हैं आग ही आग, पाप की दुनिया और अंदाज 1994। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो। पहलाज नेहलानी भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे थे। विनम्र नमन। 27 जून को हमसे विदा हो गए तमिल सिनेमा के जाने माने फिल्मकार, गायक और संगीतकार के भाग्यराज। भारतीय सिनेमा, विशेषकर तमिल और हिंदी सिनेमा के इतिहास में के भाग्यराज एक वन मैन आर्मी रहे। एक ही समय में फिल्म के लेखक, निर्देशक, अभिनेता और संगीतकार, सब कुछ एक साथ। मणिरत्नम से लेकर शोमैन राज कपूर तक पटकथा की उनकी जादुई समझ का लोहा मानते थे। जब रजनीकांत और कमल हासन अपनी अपनी स्टाइल से अभिनय की दुनिया पर राज कर रहे थे, तब के भाग्यराज एक साधारण, सीधे साधे और डरपोक आम आदमी के रूप में तमिल सिनेमा में दर्शकों के दिल में उतर गए। के भाग्यराज का जन्म 7 जनवरी 1993 को तमिलनाडु के इरोड जिले के एक साधारण गांव में हुआ था। भाग्यराज का मन बचपन से ही

पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वे अक्सर स्कूल से भागकर सिनेमा घरों में पाए जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान होकर उनके पिता ने एक बार हताश होकर कह दिया था, ये लड़का जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाएगा। पिता की ये कड़वी बात उनके दिल को चुभ गई। उन्होंने ठान लिया कि वे फिल्मी दुनिया में नाम कमाकर सबको दिखा देंगे। कॉलेज के दिनों में असफल होने के बाद अपनी जेब में कुछ रुपए और दिमाग में ढेर सारी कहानियां लेकर वे चेन्नई आ गए। यहां भाग्यराज ने कई हफ्तों तक निर्देशकों के दफ्तरों के चक्कर काटे। उन दिनों तमिल सिनेमा में एक नए निर्देशक अपनी यथार्थवादी फिल्मों से धूम मचा रहे थे। नाम था भारती राजा। भाग्यराज जब भारती राजा से काम मांगने गए तो उन्होंने कोई भारी भरकम डायलॉग नहीं सुनाया। उन्होंने भारती राजा को अपने गांव के किरदारों और वहां के लोगों के बात करने के अजीबोगरीब लहजे को इतने मजेदार ढंग से सुनाया कि भारती राजा हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने तुरंत के भाग्यराज को अपना सहायक निर्देशक बना दिया। के भाग्यराज ने भारतीय सिनेमा की कल्ट फिल्म 16 वैथिनिले में बतौर सहायक निर्देशक काम किया। इस फिल्म के कलाकार थे कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी। इस फिल्म में उन्होंने एक छोटा सा रोल भी किया था। 2 सालों के अंदर भाग्यराज ने अपनी काबिलियत साबित की और साल 1979 में फिल्म सुवरिल्लाद सिथी रंगल में बतौर निर्देशक और अभिनेता के रूप में एक शानदार शुरुआत की। ये फिल्म सुपरहिट रही। अस्सी के दशक में भाग्यराज का नाम फिल्म हिट होने की गारंटी बन गया था। उन्होंने तमिल सिनेमा को 2 ऐसी फिल्में दी जो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों को दिखाई जाती हैं। मौन गीतोंगल सन 1981 में आई ये फिल्म पति पत्नी के अहंकार पर बनी एक परिपक्व फिल्म थी।

सन 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म जुदाई के कई हिस्से इसी फिल्म से प्रेरित थे। सन 1983 में के भागीराज की फिल्म आई मुंथा नई मुदिचू। एक शिक्षक और गांव की शरारती लड़की की इस कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया।

उनकी कुछ कामयाब फिल्में हैं चिन्नाबीडू और इधु नम्मा आलू। बहुत कम लोग जानते हैं कि 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की कई हिट फिल्में के भाग्यराज के दिमाग की उपज थी। अमिताभ बच्चन के डबल रोल वाली फिल्म थी आखिरी रास्ता। ये फिल्म असल में के भाग्यराज की फिल्म ओरू कैथियन डायरी की आधिकारिक रीमेक थी। इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और निर्देशन तीनों की बागडोर खुद के भाग्यराज ने संभाली थी।

अनिल कपूर की 1983 में आई फिल्म वो सात दिन असल में के भागीराज की कल्ट तमिल फिल्म अंधा सात नाटकल की हूबहू रीमेक थी।

गोविंदा की फिल्म राजा बाबू के भागीराज की सुपरहिट तमिल फिल्म रासुकुट्टी की रीमेक थी। जितेंद्र की फिल्म मास्टर जी के भागीराज की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुथानई मुदुचू पर आधारित थी।

के भाग्यराज को याद करते हुए हमने जिक्र किया उन्हें पहला मौका देने वाले निर्देशक भारती राजा का। कैसी विडंबना है कि इसी महीने भारती राजा भी हमसे बिछड़ गए। 10 जून को उन्होंने आखिरी सांस ली। भारती राजा भारतीय सिनेमा के उन गिने चुने निर्देशकों में से एक हैं जिन्हें 6 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। महान निर्देशक मणिरत्नम से लेकर पटकथा के जादूगर के भाग्यराज तक बहुत सारी फिल्मी हस्तियां हैं जो भारती राजा को अपनी प्रेरणा मानती रहीं। भारती राजा तमिल सिनेमा के वो क्रांतिकारी फिल्म मेकर हैं जिन्होंने बंद स्टूडियो के शीशों को तोड़कर फिल्मों को गांव की असली मिट्टी, खुली हवा और यथार्थ की खुशबू से सराबोर कर दिया था। 70 के दशक के दक्षिण भारतीय सिनेमा का मतलब था भव्य सेट और स्टूडियो के भीतर पूरी शूटिंग, लेकिन भारती राजा ने आकर तमिल सिनेमा का पूरा भूगोल बदल दिया। भारती राजा का जन्म 17 जुलाई 1941 को तमिलनाडु के थेनी जिले के एक खूबसूरत गांव अल्ली नगरम में हुआ था। उनका असली नाम था चिन्नासामी। गांव के खेतों, तालाबों, लोकगीतों और ग्रामीण संस्कृति ने उनके मानस पटल पर गहरी छाप छोड़ी। वे अक्सर गांव के लोगों के बर्ताव को बहुत बारीकी से देखते थे। फिल्मों में आने से पहले वे स्वास्थ्य विभाग में एक क्लर्क की नौकरी पर थे, पर उनका दिल थिएटर में धड़कता था। आखिरकार नौकरी छोड़कर वे चेन्नई आ गए। सन 1977 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई 16 वैथिनिले। इस फिल्म ने तमिल सिनेमा के सारे पुराने नियम तोड़ दिए। जब भारती राजा ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह से आउटडोर की तो चेन्नई के कई बड़े स्टूडियो मालिकों ने कहा, ये पागल लड़का पूरी फिल्म खराब कर देगा, आउटडोर में ना अच्छी लाइटिंग होती है ना आवाज साफ आती है। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो इसने इतिहास रच दिया। इस फिल्म में भारती राजा ने कमल हासन, रजनीकांत और श्रीदेवी को कास्ट किया था।

इस फिल्म में पटकथा के बेताज बादशाह के भाग्यराज उनके सहायक निर्देशक थे। भारती राजा की फिल्में सिर्फ गांव की खूबसूरती नहीं दिखाती, वे गांव में फैली रूढ़िवादिता और जातिवाद पर करारा प्रहार भी करती हैं। किसक के पोगुम रेल 1978 में आई ये फिल्म एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी है, जो अलग अलग गांवों में सामाजिक ताने बाने और रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द घूमती है। 1978 में आई सिगप्पू रोजक्कल, ग्रामीण फिल्मों के उस्ताद भारती राजा ने सबको चौंकाते हुए कमल हासन और श्रीदेवी को लेकर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बनाई थी। ये फिल्म बहुत कामयाब रही। 1987 में आई वेदम पुदिथु, ये फिल्म जाति व्यवस्था और धार्मिक पाखंड पर तीव्र प्रहार करती है। तमिल सिनेमा में इतिहास रचने के बाद भारती राजा ने हिंदी सिनेमा का रुख किया। 1986 में उन्होंने बनाई सवेरे वाली गाड़ी, ये उनकी तमिल कल्ट फिल्म किसक के पोगुम रेल का हिंदी रीमेक था। कलाकार थे सनी देओल और पूनम ढिल्लो।

0: सन 1980 में भारती राजा ने अपनी फिल्म सिगप्पू रोज़ाक्कल का हिंदी रीमेक किया रेड रोज के नाम से।
1: हम जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन किसी से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते।

0: पिछले एक हफ्ते से मेरी बहन घर वापस नहीं लौटी।
1: 1984 में आई आज का एमएलए राम अवतार। इस फिल्म में राजेश खन्ना और शबाना आजमी ने काम किया था। 1983 में आई कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरे के अभिनय वाली फिल्म लवर्स।

0: 1984 में आई कानून क्या करेगा, सितारे थे सुरेश ओबेरॉय और दीप्ति नवल। भारती राजा को 6 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। 1982 में फिल्म अनाथा रथम के लिए, 1986 में फिल्म मुथल मरियाथाई के लिए, 1988 में फिल्म वेदम पुदिथु के लिए, 1985 में फिल्म करुथम्मा के लिए, 1996 में फिल्म अंथी मंथराई के लिए और साल 2001 में कडाल पुक्कल के लिए। भारत सरकार ने सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें साल 2004 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। विनम्र नमन।
1: हे

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का जुलाई महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती के मुंबई स्थित स्टूडियोज में किया गया है।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है देवव्रत मिश्र का सितार वादन। वाराणसी के प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्मे देवव्रत मिश्र ने अपनी मां प्रमिला मिश्रा से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और अपने पिता पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के मार्गदर्शन में सितार की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार देवव्रत मिश्र ने ठुमरी परंपरा और बनारस घराने के गायकी की विशिष्ट बारीकियां अपने दादाजी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से सीखी। इस प्रभाव ने उनके सितार वादन को एक अनूठी पहचान दी। सितार

0: सदन की शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट और गोल्ड मेडल के साथ संगीत प्रवीण देवव्रत मिश्र आईसीसीआर के सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित मंचों पर सितार वादन की सफल प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला प्रमुख हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे कई देशों में अपने सितार वादन से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। देवव्रत मिश्र को नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न संगीत शिखर सम्मान, बीएचयू कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ड जैज क्रिटिक अवार्ड और वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड यूएसए से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार प्रशांत मिश्र। देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग जोग से कर रहे हैं। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन द नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक टुनाइट वी ब्रिंग यू सितार रिसाइटल बाय देवव्रत मिश्रा। Born into distinguished music gharana of Varanasi, Devvrat Mishra received initial music training from his mother Pramila Mishra and underwent formal training in the sitar under the guidance of his father Padmashri Pandit Shivnath Mishra. An A-grade artist of Akashvani, Devvrat Mishra received distinctive lesson of Thumri tradition and vocal style of the Banaras gharana from his grandfather, the great Thumri exponent, Pandit Mahadev Prasad Mishra, an influence that lent a unique identity to his sitar playing. Postgraduate in sitar and Sangeet Praveen with gold medal, Devvrat Mishra is also

यूएसए, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली एंड जर्मनी। देवव्रत मिश्रा हैज बीन ऑनर्ड विद द नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न, संगीत शिखर, बीएचयू कौस्तुप सम्मान, जर्मन बेस्ट जैज क्रिटिक अवार्ड एंड द वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड यूएसए। इन टुनाइट्स प्रोग्राम अकम्पनींग हिम ऑन तबला इज प्रशांत मिश्रा, एन ए ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी। देवव्रत मिश्रा इज बिगनिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विथ राग जोग, विलंबित एंड ध्रुतगत सेट टू तीन ताल।

0: आप सुन रहे थे राग जोग। देवव्रत मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग गोरख कल्याण में सितार वादन। मध्य लय रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में है।
1: यू जस्ट हर्ड राग जोग। देवव्रत मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग गोरख कल्याण। मध्य लय इज सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत इज इन तीन ताल।

0: राग गोरख कल्याण के बाद देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का समापन दादरा ताल में निबद्ध राग मिश्र पीलू में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग गोरख कल्याण, देवव्रत मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विद धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र पीलू सेट टू दादरा ताल।

0: ये थी सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र पीलू में धुन। कलाकार थे देवव्रत मिश्र। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आपके साथ तबले पर संगति की प्रशांत मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग मिश्र पीलू प्लेड ऑन सितार बाय देवव्रत मिश्रा इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक अकंपनी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की आज घोषणा कर दी गई है। आर्टिकल 370 फिल्म के लिए यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिलेगा।
1: लेकिन आप चाहे मुझे एनआईए की तरफ से भेजिए, आईडी की तरफ से भेजिए या कश्मीर का सीएम बनाकर भेजिए, फिल्म मेक नो डिफरेंस। टेररिज्म धंधा है। इट हैज नथिंग टू डू विद ड्रामा ऑफ आजादी, बट इट हैज एवरीथिंग टू डू विद मनी। अगर अमेरिका पाकिस्तान को अरबों रुपए देता है बिन लादेन को पकड़ने के लिए, तो पाकिस्तान इसे ढूंढने का नाटक करेगा, पकड़वाएगा नहीं, ताकि उसकी फंडिंग चलती रहे। सेम सिचुएशन वैली में।
0: ब्रह्म युगम के लिए ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। राजकुमार पेरियासामी को तमिल फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार दिया जाएगा। संजय मिश्रा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और सचना नबीदास और रूपाश्री वरकड़ी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। शाश्वत सचदेव और जीवी प्रकाश कुमार को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अभय जोधपुरकर को और वेकोम विजयलक्ष्मी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का पुरस्कार दिया जाएगा। तेलुगु फिल्म चिन्ना काथा कांडू को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिलेगा। गुजरात के अहमदाबाद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग से 5 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना रामोल गाताद्र रोड पर मौजूद फैक्ट्री में हुई।
2: भीषण आग की घटना की खबर मिलते ही नजदीकी वस्त्राल कैंप से रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने तुरंत स्थल पर पहुंचकर फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला और शवों को बरामद किया। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है। अहमदाबाद फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है और फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त और मेयर सहित अहमदाबाद नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की है। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार यह पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घायलों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने भी हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। संसद के मॉनसून अधिवेशन से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों के सुचारू संचालन में सहयोग की अपील करेगी। मॉनसून अधिवेशन 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित किए जाने की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के लिए सदन में अलग से बैठने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। श्री बिरला ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में 6 शिवसेना UBT सांसदों के विलय को भी मंजूरी दे दी। इन 6 सांसदों के विलय के बाद लोकसभा में शिवसेना की संख्या 7 से बढ़कर 13 हो गई है। राजस्व आसूचना निदेशालय DRI ने देश में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए। इसके अंतर्गत विदेश से तस्करी कर लाया गया 15 किलोग्राम सोना और 20 किलोग्राम चांदी जब्त की गई, जिसकी कुल कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए है। साथ ही 2 करोड़ रुपए से अधिक की भारतीय मुद्रा भी जब्त की गई। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन अभियानों में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा की दूसरी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। छात्र अपने नतीजे डिजी लॉकर परिणाम पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार CBSE ने इस वर्ष से 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षाएं शुरू की थी। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पवित्र अडप्पा विजय अनुष्ठान आज पुरी के श्री गुंडीचा मंदिर में पूर्ण श्रद्धा के साथ संपन्न हो रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ मैच